लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: Smack them back.
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़िकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। चूँकि ये मालूमात का प्रोग्राम होता है, इसमें हर कोई हिस्सा ले सकता है। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक से ये तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर बराह रास्त मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर, जितने भी नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मौसम का हाल बताया है, इस वक्त हम मरी में बैठे हुए हैं और अल्लाह के फजल से मौसम जो है ना इतना सर्द है और ना ही इतना गर्म। इस वक्त 16-17 डिग्री, कहीं 18 डिग्री गर्मी है और ये एक बहुत प्यारा मौसम है।
1: आप मरी में बैठे हुए हैं, कहीं जुलूस में शामिल तो नहीं है? अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा
2: जी। इंशाल्लाह वो आपने पाकिस्तान की मरी मुझे तो वो याद आ जाता है कि जब बाहर निकलते हैं तो वो धूप होती है, तो हमारी माए कहती होती थी हमें कि अल्लाह उनको जनरल चीफ को, हमारी वाला वो कहते थे बेटा देखो बाहर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर जाए तो दुआएं माँ करती है कि जा पुत्र तुम्हें तत्ती हवा ना लगे। तो इस तरह के जब से हम लोग यूरोप में आए हैं तो यहाँ पे तत्ती हवा तो बहुत ही कम हमें मिलती है और उनकी दुआएं जो है वो कामयाब हो गई। अल्लाह आगे भी करे, खैर से हो। तो अभी आपके मैं प्रोग्राम सुन रहा था, अली बोल रहा था जर्मनी से और मलक सिकंदर बोल रहा था अपना बॉर्नहोल्म से। तो ये एक बड़ा अच्छा सुकून है कि दोनों इतने मसरूफ होने के बावजूद भी आपको रेडियो पे टाइम दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर साल फलके मुल्क होता है, फलके मुल्क का मतलब है कि अवामी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे बॉर्नहोल्म में, और वहाँ पे सारी सियासी पार्टी, जैसे यहाँ पे फिले पार्क में आप भी जाते होते हैं, कभी कभी हम भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे काफी वो सियासी जो गुफ्तगू और पार्टियों के मंशूर वगैरह इसके ऊपर डिस्कस होती है। तो ये बड़ा अच्छी बात है राजा साहब के लोग जा रहे हैं। यहाँ के हालात जो है उसके ऊपर मेरी कल रात भी सिकंदर मलिक के साथ चर्चा हुआ था थोड़ा सा, यहाँ के जो गंभीर हालात हो रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस रेडियो पे, आवाम को आगाही देंगे। तो राजा साहब आपका कोई रेलिवेंट सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। जी राजा साहब।
1: शाह साहब, आप बॉर्नहोल्म की बात की तो यहाँ की भी बात की, तो ये भी तो सियासी गुरु होते हैं, हर जगह अपना अपना एक निज़ाम होता है, तरीकाकार होता है, जिस तरह आप अक्सर पीडीएम की हुकूमत की बात करते होते हैं।
2: जी बिल्कुल, जो सियासी गुरुओं को आपने बात की है, सियासी गुरु की वजह से ही आवाम जो होती है वो बिल्कुल अनजाने में गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनके कहने पे मूर्ति जगह पे वोट डालते हैं और वो कुछ बात नहीं कहते हैं। अली ने बड़ी खुल के बात की और बड़ी अच्छे तरीके से उसने समझाने की बात की, और हम लोग तो ये आपके मीडिया पे हर दफा ये लोगों को बात समझाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मखसूस आदमी को वोट दें या किसी मखसूस पार्टी को वोट दें, हम तो ये कहते हैं कि ये जो कानून है जो कल को बन चुके हैं, जो आपको तंग करने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करें। अभी आप ये देखें कि यहाँ पे जो हालात हैं वो किस करवट बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों के ऊपर हो रहा है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ, काश के अदनान हमारे साथ होता तो मैं उसके ऊपर सवाल करता कि ये जो लोग मुख्तलिफ मेलों में मुख्तलिफ जगह पे जो लगाते हैं, क्या नाम है, अपना टेबल लगाते हैं और वो चीजें अपनी बेचते हैं, तो इनके ऊपर हुकूमत कितनी सख्ती करने जा रही है और किस तरीके से टैक्स ऑफिस और मम्स ऑफिस और दूसरों के ऊपर इनके केसेस, कुछ के रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं, ये हमारी इसकी वजूहात क्या है। और ये अगर वो अदनान साथ होता तो मैं आपसे पूछ लेता कि उसके इल्म में भी कुछ बातें हैं और ये खुल के आवाम तक, ताकि आवाम को सिर्फ ये नहीं कि मेरी जबान से ही हर चीज की आगाही हो, दूसरों से भी पता लगना चाहिए जो इस चीज को अरेंज करते हैं। तो अपना यहाँ के जो हालात है वो हमें बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अभी मलिक सिकंदर ये बात कर रहा था कि देखें कि यहाँ सोशल डेमोक्रेट ने जो वो मकानों के लिए जो बोलीज के लिए उन्होंने कहा कि 3 लाख मुसलमान है या इससे थोड़े से ज्यादा मुसलमान है, उनके देखिए, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे बेटे जो है या मेरे बच्चे जो है वो बड़े इंटीग्रेट हो चुके हैं, बड़ा वो बड़े इस माहौल के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सारे डैनिश जो हैं वो राशिस्ट नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें अपने अंदर का जो राशिज्म है उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ताकि ये कानून बने किस वजह से।
1: आपने अदनान का जिक्र किया तो अदनान अली अमीन हमारे साथ है। अदनान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है। अदनान, आप कैसे हैं? शाह साहब ने आपका जिक्र किया तो शाह साहब अदनान हमारे साथ आ गए हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम अदनान।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अंकल आप?
2: जी मैं ठीक हूँ। अदनान, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप लिसनर को बिल्कुल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे बताएंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेलों के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स लोग लगाते हैं, बहुत कोई मैंगो फेस्टिवल हो या कोई ईद फेस्टिवल हो या आगे पीछे, तो यहाँ के मम्स और स्कैडिटिज्म जो हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं, और काफी लोगों ने जो है जो सुना है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन मुहैया की है मम्स और स्कैड को, तो अब वो कंट्रोल करने जा रहे हैं और वो पीछे लग चुके हैं। तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं और ये कहाँ तक सच है कि जो लोग अगर 2 लाख या 4 लाख की चीजें इम्पोर्ट करते हैं और वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ 50,000 जो वो आपके यहाँ का कानून है कि 50,000 के नीचे अगर आप कमा रहे हैं तो उसके ऊपर ना आपको मम्स ना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उसकी वायलेशन जो हो रही है उसके ऊपर आप कितना जानते हैं, आप क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को?
3: आप दोनों के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं ये कह दूं कि इसलिए कि मेरा अपना इसमें चार सालों से तलक है। मसला ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने ना दो चीजें होती हैं ना, तीन चीजें होती हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद तो मैं पूरा तसल्ली से आपकी बात कर दूंगा। एक होता है कि एक होती है लबनाग, जिसमें ये पुरानी चीजें वगैरह और ये चलाते हैं, एक वो होती है, एक होती है खामा माग, और तीसरी होती है कि एक कॉपी भी एक्सम होती है जिसके अंदर आप 50,000 तक कर सकते हैं। जो आइन और कानून डेनमार्क के हैं और जो गैर कानून है वो 50,000 से लेके 1 लाख तक होता है, करीब भी वो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मॉम्स और स्कैडर को मालूम हो चुका हुआ है कि यहाँ पे मीना बाजार लगते हैं और इस तरह की क्या कहते हैं फेस्टिवल्स लगती हैं और इस तरह के इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर दो चीजें हैं जो मैंने किसी से मुझे पता चला, मैंने अभी मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं पता करने की कोशिश करूंगा अपनी पार्टी से कि ये टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि ये मीना बाजार की वजह से हो रहे हैं कि ये इसलिए कि ये जो कल्चर सेंटर है जिसको हम कल्चर सेंटर कहते हैं, जिसको टेक्निकली कह लें कि मस्जिद वाले हैं, वो करने लग पड़े हैं, तो इसकी वजह से ये क्या कहते हैं टारगेट में आए हैं कि क्या वजह है। मगर बात ये कुराक है कि जो जो जो जो वेस्टियोल्सन वाले होते हैं और जो जो जो मम्स वाले होते हैं वो हर चीज पे नजर रखते हैं और उनकी नजर में ये चीज है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने कहीं पे पढ़ नहीं सका अभी तक। मगर डेफिनेटली जब कैडर वेस्ट और मम्स वाले अंदर आ जाएं तो ये बात समझे कि ये अलार्म बात होती है, और मेरे ख्याल से इस पे कुछ ना कुछ वो देखेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मसला ये होता है कि जैसे आपको पता ही है एक वेलफेयर सोसाइटी है, इसके अंदर मॉम्स और स्कैट के बड़े सख्त कानून है, और आपको पता है कि पिछले 3 या 4-5 सालों से स्कैट के ऊपर काफी चीजों का प्रेशर भी है और वो काम कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि उनकी नजर में ये चीज आई हुई है और डेफिनेटली वो इस चीज पे क्या कहते हैं नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर क्या कहते हैं उनका पूरा फोकस है। कहाँ तक उनका फोकस है और वो क्या कर रहे हैं ये तो वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 से लेके 2019 तक एक टास्क फोर्स ग्रुप इनका बना हुआ है जो इन चीजों को चेक करता है, और वो ग्रुप जो है वो इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है, और उसको ये पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी उतने ही अप्रूवल दिए हुए हैं जितने पहले थे।
4: अदनान, आपने बिल्कुल सही बात की कि कामा और ये जो लोपा मार्केट है और जो फ्री बिली 50,000 का टैक्स का, ये आप एक साल के लिए जो होता है कि एक साल के अंदर आप 50,000 अगर उससे 100 या 200 करोड़ भी आप और कमा लें तो वो आप उसके अंदर ना लिखे तो ये वायलेशन है। ये कानून जो है ये 90s का बना हुआ है और ये फोर्सेट कर रहा है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं होगी और ये मौजूद है और ये गैर कानूनी है। लेकिन अब कौन कौन जो है जिन्होंने वायलेशन किया है, क्या क्या हो रहा है, तो ये आगे चलते तो
1: ये तो आने वाले दिनों में कानून का काम है। तो पूछते हैं अदनान, अदनान आप तो नहीं गए थे बोनऑल फल्के मूज पे, और फल्के मूज के बारे में हमारे सामान्य नाज़रीन को बताएं, शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे।
3: नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इस इवेंट पे मैं एक ही दफा दो दफा गया हूँ, मैं इस साल नहीं था गया। हाँ, ये फल्के मूज इस साल हर साल होती है और ये क्या कहते हैं एक फेस्टिवल की तरह इन्हें बनाया हुआ है और ये काफी सालों से चलता आ रहा है। इस साल जरा कम लोग थे क्योंकि जैसे आपको मालूम है कुछ वजह थी और कुछ मसूफियत की वजह से भी हो गया था, और फल्के मूज हुआ तो ठीक है, और ज्यादा तो यही लोगों के सवाल थे कि उधर तक कि ये कमिंग डे में गवर्नमेंट क्या करेगी। और सबके लिए फल्के मूज अच्छा हो गया था, मगर उसके अंदर जैसे आपको पता है एसएफ के लिए थोड़ा बुरा हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना ही खुद ही क्या कहते हैं समझ तो किसी को नहीं आई कि उन्होंने इतना बड़ा देश क्यों उठाया था और इतनी ये क्या कहते हैं बंदे को कभी कभी सोच समझ के करना चाहिए।
4: जरा वाजिया करें ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि एसएफ के बारे में जो अभी आपने पॉइंट रेज किया है इसका मुझे भी इल्म है, लेकिन आवाम की आगाही के लिए आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें बेटर।
3: देखें शाह साहब, ये है कि 2020-2019 में डेनमार्क के अंदर एक केसेस चले थे ये टैक्स सिस्टम के बारे में, जब ये सारी डिबेट चली थी और उसके अंदर काफी लोग जो है ना क्या कहते हैं उनको रिजाइन करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ऑप ऑमिस्टर था ना कोपेनहेगन का फान केंस, उसको रिजाइन करना पड़ा था। आपको मालूम होगा गाड़ी केल वेंस्टा का लीडर था मौत मोस्टा को, उसको रिजाइन करना पड़ा था। और उसी केस में ये जो स्पिन डॉक्टर था ना पीओ का, जो उसका 2012 से करीबन जब से वो शफीक मिस्टर में बैठी थी वो उसके साथ होता था, उसका भी स्कैंडल आया था तो उसको भी सैक करना पड़ा था। मसला ये पड़ा है कि जब ये दोबारा बनी है इकोनॉमी और दूसरी चीज की मिस्ट्री जब इसने ली है तो इसको अपनी मिस्ट्री के लेवल पे क्या कहते हैं रिहायर किया है, मिस्ट्री के लेवल पे, एसएफ के लेवल पे नहीं। फनी चीज ये कि वो एसएफ का मेंबर अभी तक है, कल तक था, आज है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, जहां तक ये इन्फॉर्मेशन है तो उसको उसने जब हायर किया ना तो पार्टी ने इसको बड़ा बड़ा कि कहते हैं जिसके साथ उसके मिसबिहेवियर हुए हुए थे उनने फिर इस बात को बड़ा उठाया। और वो लोगों का ये था कि ठीक है उसके उसकी जो कमेंट्स था वो भी बंदा कह सकते कि एक और डिबेट शुरू हो जाती है कि हर गलती इंसान होती है और गलती को माफ भी करना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए। तो वो अब वो डिबेट चली तो कल उसने फिर क्या कहते हैं उसको रिजाइन कर लिया। आज मैं भी ये पढ़ रहा था कि कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि देखे कि हर एक को तो क्या कहते हैं ना माफ कर देना चाहिए। अब इंगस टॉय पे जिसको आपको पता है इतनी बड़ी सजा हुई थी जिसपे फुल लिंक भी लगा था उसको भी तो माफ किया हुआ ना, तो आज उसने क्या कहते हैं पूरे मुल्क में आखिर उठाई हुई है। तो ये क्या कहते हैं ये केस बन गया था तो उसके लिए ये कहते हैं कि बंदा वही कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से तो उसने बैड डिसीजन ली थी, मगर कभी कभी जब बंदा ऊपर जाता है ना तो फिर बंदा नीचे भी आता है। तो ये उसके लिए काफी क्या कहते हैं डैमेजिंग उसके अपने लिए भी हुआ है और पार्टी के लिए भी हुआ है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। कि अल्लाह का शुक्र कह ले कि गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ गई थी, क्योंकि जो बाकी की पार्टी थी वो क्या स्टेटमेंट देती, क्योंकि जिस तरह मार्च लिंक है उसकी पार्टी में आप ही क्या कहते हैं ये वाक्य हुआ होता, उसका अपना चेयरमैन छोड़ के गया था तो सर दूसरी पार्टियों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था। और इसने थोड़ा बहुत फॉल्क मेयर को क्या कहते हैं ना हॉस किया है, क्योंकि ये एक चीज थी जिसकी वजह से हुआ है। बाकी फॉल्क मेयर अच्छी हुई है, जिस पर सारी पार्टी ने अपने व्यू बताया कि हम आगे आगे क्या काम करना चाहते हैं और क्या चीजें करना चाहते हैं। तो फिर तो और इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में,
1: क्या होता है फ्यूचर में। तो जी शाह साहब आप सवाल कर लें।
4: जी मैं ये कहना चाहता था कि लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो आप मुसलमानों के बारे में दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है और ये सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, और ये ज्यादातर सोशल डेमोक्रेट जो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मुसलमान, ये पूरी गवर्नमेंट जो है ये मुसलमानों के यहाँ से वोट लेके तो ये स्टैंड हुई है। लेकिन अब क्योंकि ग्रीनलैंड का मसला जो है वो बड़ा अलार्मिंग मसला है, उसको हाइड करने के लिए ये लोगों की तवज्जो वहां से हटाने के लिए और जो है ये मसाइल जो है इसको बढ़ा रहे हैं, और ये मसाइल इतने गंभीर है कि अगर

0: को भी अपनी जबान में, या पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी जबान में लिटरेचर, या कोई ऐसा अदारा या किसी प्लेटफॉर्म पे आके वो क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे कि हमारा फ्यूचर का प्लान क्या है अल्बर्ट कम्यून के बारे में।
1: शाह साहब, इसमें मैं है ना एक बात आपको ये कह दूं कि जो ग्रीनलैंड का मामला है ना, उसके अंदर अमेरिका के अंदर अपनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम पड़ गई है, क्योंकि जो दो डेमोक्रेट है ना जो पावरफुल हैं, जिनने प्रेजिडेंट इलेक्शन भी लड़ना है 2028 में, वो ग्रीनलैंड नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो अब पता नहीं उसका क्या बनता है, वो आपस में लड़ लें तो बेहतर है। और ट्रंप के लिए तो अभी क्या कहते हैं बड़ी बिस्ती हो रही है उसकी ईरान के बाद, तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उसकी तो पता ही नहीं है। दूसरी बात, आपका सवाल करेक्ट है, ये खाली एमिसोन की बात नहीं है, ये 98 कमूनों की बात है। जैसे आपको पता है कि अभी ये फॉल्को मिलर से पहले ही जाने से पहले ही इनकी पहली मीटिंग शुरू हो गई हैं कमूनों की, कि इनको कितने पैसे मिलने हैं और कितना इनके पास बजट है अगले साल का। और बिगेस्ट बात ये होती है कि आपका सवाल तो बात वही, आपके सवाल की जवाब चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, पैसे कितने हैं डब्बे में, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। अब आपने हमारे कमून की बात की है, मैं आपको बात बता दूं कि 2026 का ये जो बजट अभी चल रहा है, इसके अंदर हमें पता था, मुझे पता था, सारे बंदों को पता था, बंदा पढ़ लेता कि पूरे जो जितने खर्चे हैं और जितने पैसे आ रहे हैं वो उतने नहीं है। यही सेम बात थी कुछ तीन चार और कमूनों की, इधर देशस्तान में देखा जाए तो बैलेंस पिक और टॉस टॉप इवन देखे। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आपने एमस्टोन की बात की है, हमारी हर टॉस टॉप कमून है उसको भी मसला पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इतनी कंस्ट्रक्चर, इतनी इतनी कंपनियां, जितना इतना कुछ डाला गया हुआ है। तो ये बात होती है कि आपको अपनी पार्टी का जाकर बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हर जो कमून होती है, ये राजा साहब को मैं बता दूं कि वो एक सोल्यूशन बार बेचते हैं लोगों के अंदर कि लोग क्या आइडिया देंगे बजट के लिए, और ऑब्वियसली इनको उस वक्त लोगों को बाहर निकल कर बताना चाहिए कि आप ये कैटलॉग बाहर आया है, आप लोगों के पास मौका है, आप जाके बताएं कि आपके पास कोई आइडिया है और आप उस आइडिया से कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो करें। ये हर एक के पास मौका होता है और ये हमारा काम होता है कि हम इसको बताएं। और आपकी जो बात यही कि हम मुसलमान टारगेट में हैं, आपको भी पता होगा, राजा साहब को भी पता होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन भी इस पे जाएगा और इलेक्शन के बाद भी हम टारगेट में ही रहेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ये ऐसी पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं हर, जिसे हम कहते हैं ना जेंडर टाउस, वो चेंज हो जाता है। अब आप देखें ये नॉर्दर्न आयरलैंड में देखें, बेलफास्ट में क्या हो रहा है इस वक्त, एक बंदे की गलती की वजह से पूरा क्या कहते हैं बेलफास्ट के अंदर घरों में आगे लग रही है, कंपनियों में आगे लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ये इस चीज, अल्लाह का शुक्र है डेनमार्क में इस तरह की चीजें नहीं होती, अल्लाह से होंगी भी नहीं, क्योंकि डेनमार्क कौम एक डिफरेंट वे की और उनका डिफरेंट सोच है, मगर मसला ये है कि जब तक वन प्लेटिना होगा उतनी देर तक ये मसाइल हमेशा रहेंगे। और इस पे ये बनता है कि हम कोई ना कोई इस बात करें और एक बड़ा क्या कहते हैं सोचें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बता दूं कि जो सुशील तेंदुलकर का ऑफ बैठा हुआ है, उसका बाप क्लाउस जेंसन है, आपको भी शाह साहब पता है कि वो कौन है, वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लेनिंग का चेयरमैन, तो अब वो ऑब्वियसली उसको भी पता होगा, पुत्र इतना, पुत्र की अपनी राय मुझे पता है अंदर से क्या है, मगर उसने तो वही करना है ना जिससे वोट बैंक और जिससे क्या कहते हैं जेंडर टेंगो,
2: जाहिर है अदनान सियासतदान होता है उसको तो वोट के लिए जरूरत होती है। तो हमें ज्वाइन कर लिया शाह साहब, कामरान कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया है मैं मालूमों से, चूंकि वो सितंबर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपने पेंशन की बात की, वही जो बातें हम कर रहे हैं तो वही बातें जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चल रही हैं जहाँ से हम पुल क्रॉस करके जाते हैं। तो कामरान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी जी, बहुत शुक्रिया साहब, आप सबके सबको मेरी तरफ से जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
4: वालेकुम सलाम।
2: कमरान हमारे साथ अदनान है, ये तजिया भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, और ये सोशल डेमोक्रेट के हैं और آپ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں اور آپ الیکشن لڑنے

0: जा रहे हैं सितंबर में, और पेंशन के एक बात हो रही थी, पेंशन के कानून की बात हो रही थी, और दूसरा एक बात चल रही थी कि अभी छुट्टियों में जो है वो पूरी कम्यून में जो है फ्री कर दिया गया, बस पास या ट्रेन पास जो है वो 24 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ये कम्यूनें अपने अपने तरीके से काम करती हैं, आप क्या कहेंगे?
1: जी, सबसे पहले मैं ये जो नए इश्वाक साहब आए हैं ये मालमो में बड़े माशाल्लाह, ये भी सोशल डेमोक्रेट में होते हैं,
0: इनको भी
1: तो बहुत
0: वेलकम
1: शुक्रिया।
0: करते हैं जी।
1: जी हाँ जी बिल्कुल, ये आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो अभी जो ड्यूरिंग समर है ना, यानी 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक जो बच्चे पैदा हुए हैं बिटवीन 2007 से 2010 के दरमियान, तो उनके लिए 2 महीने बिल्कुल फ्री बस कार्ड है, और वो ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं, और वो जो स्कोने है जो पूरा सूबा है उसमें फ्री ट्रैवलिंग वो ना हो सकती है। अगर उनको कोई जॉब है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो फ्री जॉब पे जाएंगे, और अगर कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कोई यानी कोई फ्री टाइम को कहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं और एक और छोटी सी और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। जो लोग हैं सीनियर हमारे जो हैं, जो 70 है या 70+ हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ मालमो के अंदर उनके लिए जो जो है बस टिकट फ्री है, सिर्फ शहर के अंदर। जी रैसा बोले
0: जी शाह साहब, आपने बात सुनी। आप अशफाक साहब, आप अगर कोई बात करना चाहें, आपको वेलकम करते हैं अपने दोस्त मेहमानों के साथ।
2: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी बस हमारे हमारी कम्युनिटी कम्युनिटी को यहाँ से बहुत देर से इस चीज को ढूंढ रहे थे कि कौन सा शख्स है जो हमारी रहनुमाई कर सके, हमारी मदद कर सके। मैंने भी बड़ा सर्च किया तो मुझे कामरान साहब मिले। पहले से मैं इनको जानता था, ये बहुत सोशल है, और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी और हमारी कम्युनिटी के लिए कि इनकी खिदमात हमें मिल रही है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये पहले ही से बहुत मदद करते हैं लोगों की, और जब ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा करेंगे। मैं जिस शख्स से भी बात करता हूँ ना, हर कोई खुश है इनसे। हर कोई कहते हैं जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि कामरान साहब जो पहले मानते नहीं थे, अब हमारे कहने पे, कम्युनिटी के कहने पे आगे आ गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये बहुत ही समाजी कारकुन है, हेल्प करने वाले हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं, करेक्टर के भी बहुत अच्छे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे।
0: शाह साहब, आप देखेंगे सारे ये सोशल वर्कर जो हैं इकट्ठे हो गए। अदनान भी सोशल वर्कर हैं, आप भी सोशल वर्कर हैं, अदनान भी हैं, इशफाक साहब भी आ गए हैं। तो शाह साहब, मैं आपको चाहूंगा इस प्रोग्राम को आगे लेकर चले।
3: जी, पहले तो मैं कामरान को भी और उनके दोस्त जो हैं उनका नाम मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इशफाक साहब मेहरबानी। देखिए, सबसे पहले हमें मैं यहाँ पे बहुत अरसे से सीख रहा हूँ कि मैं डेनमार्क के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे अपने लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने खुद क्रिएट किया है, उसको हम कैसे बात करें। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसको पढ़ें। जो स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर अबूर हासिल करना ये आपका हक हासिल है, और ये बहुत आपके लिए, जब आप सियासतदान होते हैं तो ये आपके लिए एक संग मेल के तौर पे सामने आता है। तो ये जब आप कर लेंगे तो फिर आप अपनी लोकल जो कम्यून का जो आपके वहां पे भी टैक्स होती है या वहां के जो मंशूर उनका होता है उसको देखें कि वो कहाँ पे आप वो आइन के खिलाफ है। इसी तरह ये अदनान बेटा हमारे साथ है, ये भी यंग है, ये सोशल डेमोक्रेट का है, ये उन चंद लोगों में से है डेनमार्क में जो आइन और लोकल जो कम्युनों के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको समझने में ये काफी हार्ड वर्क कर रहा है, और अल्लाह के फजल से हम दिन ब दिन ये देख रहे हैं कि ये इस मीडिया पे आकर अब चीजों को हाईलाइट कर रहा है। क्योंकि मैं तो अब 76 हो गया हूँ, तो कब तक जिंदगी है, ये कुछ ही होती है कि हमारे मालमो स्वीडन से, स्टॉकहोल्म से, यूरोप में जहाँ बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, इनको इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करना चाहिए, और आप लोगों को सोशल मीडिया पे जितना भी आप देखिए, एक चीज होती है रिटर्न, आप आर्टिकल्स लिखते हैं वो आर्टिकल्स जो होते हैं वो चंद लोग पढ़ते हैं, यानी कि अगर मुझे कोई आर्टिकल मेरे सामने आ गया तो मैं उसको देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ ये इसकी हेडिंग जो है या इसकी जो वर्डिंग्स है ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है या ना आवाम के इंटरेस्ट में है, तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ज्यादातर जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो मिडल में या एंड में अपना तबसरा लिखते हैं, उसकी जो चीज होती है खतो ख्याल होता है वो लिखते हैं, तो वो जब पूरा इंसान ना पढ़े तो उसकी जहन में ये चीजें नहीं आ सकती। तो लिहाजा जो आप बात करते हैं वो हर कोई सुन सकता है, अगर कोई इस वक्त गाड़ी चला रहा है तो उसको जरूरत नहीं पड़ने की वो हमारी बातों को सुन सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, कामरान साहब को यही कहूंगा कि आपके पास, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके पास मोर देन 80% जो लोग हैं जो मैं जानता हूँ मालमो और दूसरी जगह, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ज्यादातर एजुकेशन बेसिस पे और दूसरी चीजों पे आए। ये बहुत हमारे यहाँ पे डेनमार्क में ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो जो डेनमार्क के अंदर जो सियासत चल रही है उसको टाइम दे। तो यहाँ पे जो सियासतदान है हमारे, मैं उनको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा लेकिन वो ये करते हैं कि वो मेन टाइम आते हैं और अपनी फैमिली के और अपने दोस्तों अहबाब के जरिए आकर वो लेक्चर में सर निकालते हैं बाहर और उसके बाद जो है वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उन उनसे उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हमारे लिए या अपने आने वाली नस्लों के लिए, उनके अपने खानदानों की नस्लों को, उनकी बेहतरी के लिए उनको काम करें। तो कामरान साहब ये बहुत आप खुशकिस्मत है कि जो अल्फा फार्मून ने आपके जो सबका वजीर आजम जो शहीद हो चुके हैं उन्होंने जो काम उठाया था बेड़ा, वो सोशल डेमोक्रेट आज आपके मुल्क में राज करने जा रही है, बच्चों को आजादी दी जा रही है, उनकी ट्रांसपोर्ट फ्री की जा रही है। तो ये इसी तरह इंग्लैंड में भी है, डेनमार्क के अंदर जो है ये हमारे जो काउंसलर्स हजरात है ये इन पे डिपेंड करता है कि ये आवाज कैसे उठाते हैं, लेकिन ये उठा नहीं रहे। अगर यहाँ पे भी ये आवाज उठाए तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज की रियायत है। तो इस पे अगर आप कोई बात करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी कामरान साहब।
1: जी जी बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी का इशवाक साहब, माशाल्लाह आपके गोल्डन वर्ड्स, बहुत शुक्रिया इशवाक साहब। माशाल्लाह मैं थोड़े इशवाक साहब के बारे में थोड़ी सी एक रोशनी डालना चाहूंगा। ये माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन मोर देन कोई अबव 20 ईयर्स ये यहाँ पर माशाल्लाह रहते हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे और ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह बच्चे इनके माशाल्लाह मालूम कम्यून के साथ हैं और ये स्पेशली यूथ के साथ वो काम करते हैं और कोई भी डिफिकल्ट्स होते हैं यहाँ तक कि माशाल्लाह इनके इनके जो है वो पुलिस के साथ भी ये काम करते हैं कि वेलफेयर के लिए कि बच्चे को कोई मदद चाहिए जिस तरीके से, तो माशाल्लाह ये फ्रंट पे होते हैं और फ्रंट लाइन पे होते हैं और स्पेशली यूथ के साथ इनकी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है। और जो जैसे कोई बंदा नया आता है तो ये हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई बंदा नया आए कोई काम करे तो ये एज एक सपोर्टर भी कह सकता हूँ मेरे लिए हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं कि कैसे है कैसे नहीं। थैंक यू सर इशवाक साहब, हैट ऑफ यू आपके लिए। और मैं थोड़ा सा ये मतलब कहता चलूंगा, थोड़ी सी एक बात करूंगा कि 2022 में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, वहां पर एक मैं कोई नाम नहीं लेता किसी का, कोई ऐसी कोई स्ट्रेंज पार्टी आई जिसकी वजह से बहुत से वोट हमारे टूट गए और फिर एक एसटी पार्टी है जो आपको डेनिश में इसको आप डांस फोल्क पार्टी कहेंगे, यहाँ पर स्वीडिश डेमोक्रेट उसको आप कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक राइट विंग की पार्टी है जिसके ओपिनियन बहुत एक्सट्रीमिस्ट होती है, मतलब है वो एक अपना एजेंडा रखती है और वो एक किस्म से आप रेसिस्ट पार्टी वो उनको कह सकते हैं, वो इक्तदार में आ गई और जो 4 साल में हुआ कौन से कानून बने किस तरह बने तो ये आपके सामने ही है। यहाँ तक कि उन्होंने डेनमार्क ने तो क्लास 5 में डाल दिया पाकिस्तानियों को, इन्होंने स्वीडिश एम्बेसी बंद ही कर दी पाकिस्तान में और यहाँ तक कि आपके जो डेनिश पाकिस्तानी थे जो यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक यहाँ आते थे उनको इतना बड़े मसले हुए कि अप्लाई करने के लिए वो इथियोपिया जा रहे हैं, वो उनको इंडोनेशिया भेज रहे हैं, वहां पर कोई मसला आ जाता है फिर आप मुल्क जाओ दोबारा, वहां से दोबारा कागज बना के लाओ, फिर अप्लाई करने के लिए आओ, फिर वीजा लग जाए तो वीजे का वो जो आप फिंगरप्रिंट देने के लिए उस मुल्क जाओ। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने किया। अब एक रिसेंटली मैं आपको जस्ट लास्ट वीक की एक बहुत खबर देना चाहूंगा, दो तीन खबरें सिर्फ मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी जो एसटी पार्टी की के जो एमएनए थी, जो मिनिस्टर थी, उसने ये कहा है कि हम अब यहाँ पर फ्रेंच जैसा भी कानून लाएंगे। कानून क्या होगा? वो ये कानून होगा कि जो हमारी बहनें वगैरह जो स्कार्फ पहनती हैं, वो ये समझती हैं कि वो मतलब है, वो डिसाइड करेंगी पॉलिटिशियन की आपने पहनना क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपने जाना है क्या करना है। और क्योंकि वो जो औरत को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया गया कि ये एक किस्म से उसका सर पे दुपट्टा लेना या कुछ लेना, ये मतलब है एक फ्रीडम नहीं है। ये चीजें अब यहाँ तक के वो लोग आएंगे कि आप वो सिर्फ घर में पहन सकते हो, अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे होगे तो वो आप नहीं ले सकते, फ्रांस ने बनाया हुआ है। तो ये एक उनके, फिर दूसरी बात ये भी है, इन्होंने एक कानून बनाया जिसमें स्कूल को प्राइवेट कर दिया। अब स्कूल में आपको पता है एज ए बिल्कुल पाकिस्तान डिफरेंट मुल्कों की तरह कि आप जब वो जाता है एज ए स्टूडेंट, वो एक किस्म से आपका एक कस्टमर है। उससे कई स्कूलों ने कई मिलियन करोने कमाए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो इसमें अर्निंग नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए लगने चाहिए, लेकिन वो अर्निंग शुरू हो गई। इसको भी हम चाहते हैं, इसको हम वापस इसको रिवोक लें। तो जो मैं अगर मेरी जो विजन है, जो मेरा विजन है, अगर मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ, बाकी अल्लाह जानता है फ्यूचर में, तो ये मेरा जो विजन है यहाँ पर, वो दो तीन चीजों पे मैं बहुत मैंने फोकस करना है यहाँ पर। मोस्टली जो हमारी जो एक है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होती है? वो लैंग्वेज है। हमारे बहुत से जो यहाँ पर भाई हैं डिफरेंट, मैं अपनी एक स्पेशल कम्युनिटी की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके सबकी बात कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा हमें सीखनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और जो डिफरेंट है यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी, हम साइलम सीकर तो नहीं है, हम वर्क परमिट पे आते हैं, तो उनके लिए कोई यानी शाम की क्लासेस तो हैं ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उनका टाइमिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, उनका टाइमिंग हफ्ते में ज्यादा हो जाए, समर के अंदर भी ये चीजें मतलब है चले। स्पेशली हमारी जो औरतें हैं उनको भी क्लासेस में मतलब है, वो अगर घर में होती हैं तो उनको भी एक लैंग्वेज कोर्स हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आपकी इंटीग्रेशन है, लैंग्वेज कोर्स आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप कोई अपना कोई डिप्लोमा करके या कोर्स करके आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्वाइव को अच्छा बना सकते हैं। एक ये चीज बहुत जरूरी है। और मैं जो मेरे लिए है यहाँ पर आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स पर, तो उनको यहाँ पर एक दो किस्म का, यानी एक इसको तालीमी वजीफा कह सकते हैं, स्टूडियो विड्रॉ इसको कहते हैं, एक स्टूडियो लोन होता है, तो हर महीने वो आता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो उनको उनका जो उनमें से तकरीबन 50-60% सिर्फ रेंट पे जो घर पे वो खर्च हो जाता है, फिर उसी में उन्होंने किताबें भी खरीदनी होती है, उसी में उन्होंने वो तालीम भी खरीदनी होती है। तो मेरा एक मकसद होगा कि हम जो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड है यानी कलेक्टिव ट्रैफिक का, वो 300 करोड़ का करें, और जो स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनके लिए चीप हो के वो मतलब है एक जगह से दूसरी जगह अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल या लाइब्रेरी और घर वापस उन पे वो
0: अदनान, ये तो सारी पॉजिटिव चीजें हैं अदनान, आपने सुना कामरान कह रहे हैं, तो ये तो सारी पॉजिटिव चीजें हैं, आप क्या कहेंगे
4: राजा साहब? मैं इसमें दो चीजें कहूंगा, क्योंकि ये पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हम लोग तो पता होगा कि हम फॉलो तो करते हैं स्वीडन में, और मसला ये है कि सोशल डेमोक्रेट को जो क्या कहते हैं ना, इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में एक या दो सीटों की वजह से ये क्या कहते हैं हुकूमत बनी थी, और ये काफी क्या कहते हैं डिफरेंस है। और जो स्वीडन में सबसे बड़ा जो एक मसला है ना, वो कमाल भाई ने सही कहा है कि ये जो स्वयं डेमोक्रेट है ना इनके वहां पे, ये बहुत हर इलेक्शन में ना बड़ा स्ट्रॉन्ग आगे चले जाते हैं। और इनकी बंदा हिस्ट्री देखे ना 2010 से लेके 2022 तक, तो आप देखें इन्होंने 2010 में 20 सीटें ली थी और 2022 में इनने ली थी 73 सीटें। मतलब देखें कि 12 सालों में इन्होंने कितना क्या कहते हैं अपना ग्रो किया था। और ये पार्टी है, और सबसे बड़ी इनकी एक बात मैं कहूंगा जो व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि फनी बात यह है कि स्वीडन का जब इलेक्शन हुआ था ना 2014 में और उसके बाद डेनमार्क का इलेक्शन हुआ था 2015 में, तो ये दोनों जो पार्टी थी ना एक्सट्रीमलिस्ट पार्टी दोनों थी, जो कैंस पॉल के ऊपर डेनमार्क में होगी, और ये इन दोनों ने उन दोनों सालों में ना अपने सबसे बड़े क्या कहते हैं जीत की थी। और इनके जो आयन और कानून है ना एक किस्म का इनका एजेंडा देखा जाए तो ये एक जैसा है, और जो टेनमस डेमोक्रेट है ना जो यहाँ पे जो बने हुए हैं उनने इनकी कॉपी करने की कोशिश की थी, ये जो स्वाइट डेमोक्रेट है ना इनके साथ, और इनके साथ उनके लिंक भी हैं थोड़े बहुत बंदा कह सकता है, तो बंदा ये कह सकता है कि जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जितनी फॉरेन कम्युनिटी है स्वीडन के अंदर, मैं कुमार भाई से यही कहूंगा कि उनको इस बार वोट जाके जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कानून स्वीडन में बने हैं ना वो अच्छे कानून नहीं है, और ये तो वही होता है कि बंदा वोट डाल के ही इन बातों को चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूं कि 2006 से 2010 तक जब मैं स्वीडन में रहा था ना तो मैंने उस वक्त एक चेंज बहुत देखा था, और मैंने ये देखा था कि हर साल जो था ना वो एक इनका बियर बदलता जा रहा था, और मुझे खतरा उस वक्त नजर आ रहा था कि ये कितने ज्यादा ही क्या कहते हैं एक्सट्रीमलिस्ट ना हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली 2022 में मैं कहता हूँ कि जब मैंने उनकी सीटें देखी थी ना और मैं हैरान हो गया था कि वो 20 सीटें से 30 सीटें तक पहुंच गया ना, तो इस बार भी वो कहते हैं जो मुझे ये भाई कन्फ्रैक्ट कर सकते हैं, मगर जो हमें पता चल रहा है वो यही है कि इस बार भी वो 80-90 सीटें नेशनल इलेक्शन में ले जाएंगे। मगर उसमें ये भी फर्क है कि जो सोशल डेमोक्रेट है ना स्वीडन में उनकी जो पार्टी लीडर्स है वो अपनी सीटें वहां ही खड़ी कर गई थी, इतनी ज्यादा खड़ी नहीं थी, एक में हाथ से ज्यादा ले गई थी वो, मगर वो इस बार जरा थोड़ी डिफरेंट टैक्टिक्स से वो मेरे ख्याल से आ रही है, क्योंकि उस दिन ना डेनमार्क का इलेक्शन बड़ा फॉलो किया था और उनकी उसकी टीम भी यहाँ बड़ी रही है डेनमार्क के इलेक्शन के अंदर देखने के लिए कि यहाँ की सोशल डेमोक्रेट कौन सी गलतियां कर रही है और उससे वो क्या कहते हैं वो सेम गलतियां स्वीडन में ना दबाए फॉरेन पॉलिसी पे। तो अब देखते हैं कि स्वीडन का इलेक्शन कैसे चलता है।
0: जी कमरान को आंसर करेंगे।
1: जी जी बिल्कुल मैं एग्री हूँ। वैसे भाई नाम सॉरी आपसे मैं अपोलोजाइज करता हूँ, क्या नाम भाई आपका?
0: अदनान अमीन अली।
1: फर्स्ट टाइम आपसे मेरी कन्वर्सेशन हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो ये वजूहत थी 2017 में 15 में आपको बताया कि बहुत सी जो सीरिया से आपको बताया और जो वॉर हुई थी मिडल ईस्ट से वहां से बहुत ज्यादा एक पॉपुलेशन यहाँ पर जो इमिग्रेशन जो यहाँ आए थे वो एक किस्म से वो कह सकते हैं ना कि अर्गन्स यानी आंखों का पत्थर, वो एक बड़ी एक नेगेटिव गई है यहाँ पर जो रेज अप हुआ है। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी हुई है कि थोड़े इश्यूज यहाँ पर हुए थे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको कह सकता हूँ क्राइम वगैरह यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक था, उस पर उन्होंने काम किया और सोशल डेमोक्रेटिक के दौर में उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब पुलिस ने बहुत अच्छे काम करके उसको खत्म किया गया, लेकिन वो चीज उजागर की गई। पर मैं समझता हूँ सोशल मीडिया आजकल बहुत अहम है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा वीडियोस यहाँ पर और बहुत AI के थ्रू जो बनाई गई जिसकी वजह से ऐसे। लेकिन अब और एक और पार्टी भी यहाँ पर एक ऐसी एक स्ट्रेंज पार्टी आ गई थी जिसने भी बहुत ज्यादा डैमेज किया, स्पेशली जो एक स्पेशली जो ग्रुप था वहां रिलीजियस ग्रुप था स्पेसिफिक उनको टारगेट किया, उनके वोट को तोड़ के खत्म किए गए। ये भी एक किस्म काइंड ऑफ मैं समझता हूँ एक बड़ा खराब चीज थी, लेकिन इस वक्त भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है और हम एज ए जो स्पेशली जो वोटर हैं जो भी हो वो वोट डालें और अपने उनको ज्यादा एक्टिव हो के इंफॉर्मेशन दें ताकि अपने वोट के हक को बताया जाए और जो ST को रोका जाए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जी
0: ऑप्शन नहीं है। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब आखिरी सवाल क्या करेंगे आप सबसे?
3: जी मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स सियासतदान हैं इनको एक चीज ज़हन शीन कर लेनी चाहिए। मैं इनको कोई तनकीद नहीं कर रहा कि हर पार्टी के अंदर जितने भी ये हमारे लोग हैं जो कि फेस अपना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लिखते हैं وہ جذبات میں آ کے نہ لکھے, بلکہ جو چیز ان کے ذہن, ان کو جس چیز پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے, اس کو ذہن نشین کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں. جو ہو ہمارے اسلام کے بارے میں یہاں پہ ڈنمارک کے اندر بھی اور سویڈن اور ناروے اور دوسرے ممالک کے انگلینڈ کے اندر خصوصی طور پہ بہت زیادہ مہم چل رہی ہے, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہم خود ہیں. جب تک ہم اپنے اندر سے ریشزم نہیں نکالیں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, ہم کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے جو انٹرگریشن کا جو پلرز ہیں کمیونیکیشن اور انصاف, اگر وہ ہم حاصل پہلے دو پلرز کو لے کے نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کل فیس بک میں ڈنمارک کے اندر چل رہا تھا کہ ڈینش ایک نے لکھا ہوا تھا کہ محرم میں یہاں 26 کو جو ہے جو نیروبرو میں جلوس نکلے گا, اس میں کون پسند کرتا ہے کون نہیں پسند کرتا اس کو لکھے. تو اس میں کچھ مسلمانوں نے جو کمنٹس کیے وہ بڑے غلط قسم کے کمنٹس کیے, ان کے خلاف کمنٹس کیے. اس طریقے سے وہ جو لوگ نئے لکھنے والے آئے انہوں نے بہت ہی اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ سختی سے کمنٹس کیے. تو ہمیں یہ چیزیں اویئرنس دینی چاہیے اپنے لوگوں کو. میں کامران سے شفیع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ تر اپنے جو مساجد ہیں اس کے اندر جائیں, اپنے کلچر سینٹر کے اندر جائیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہاں پہ اسلام کے اوپر, کیونکہ بہت بڑی نگرانی ہوتی ہے ہماری کلچر سینٹرز کی اور مساجد کی, کہ وہاں پہ یہ کوشش کریں کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو سے اس طرح کے جو سختی ہیں اس کے آگے کس طرح انہوں نے کھڑا ہونا ہے, کس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے اگر ان کے ایک ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے. میں بھی آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک یعقوب علی ہے, وہ ہمارے یہاں پہ بی ٹی میں وہ کافی اداریے لکھتے ہیں اور وہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں ڈینچو کے اندر. وہ اس لیے کہ وہ بچیوں کی عمر دکھا رہے ہیں کہ اس بچے کی عمر جو عراق میں یا سیریا میں 15 سال کی شادی ہوئی تھی اور اب وہ 4 بچوں کی ماں بن گئے. اسے تو کوئی اس کو سمجھدار یہ نہیں لکھتا کہ وہ 15 سال کی اس وقت تھی تو اس نے ہاں کیوں کی شادی میں, کیونکہ اسلام میں تو جب تک لڑکی رضامندی ظاہر نہ کرے جی ماں دے کے مسلمان.
0: شاہ صاحب جتنا آپ کا تجربہ ہے نا, آپ دیکھیں نوجوانوں کے پاس اتنا تجربہ تو نہیں ہے جتنی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ابھی ہمیں ٹائم اجازت نہیں دے رہا, کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. تو کامران آپ سے جب جاننا چاہیں گے کہ آپ آخری کیا ریمارکس دیں گے.
1: بس میں یہی ایک قسم سے بس کہہ سکتا ہوں اسپیشلی مالمو والوں اور جو جو ڈینش پاکستانی ادھر آئے ہوئے ہیں, کائنڈلی آپ ووٹ ڈالیں اور نکلیں باہر, اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں ایز اے کینڈیڈیٹ ہوں, مطلب سٹی کونسلر کا میرا 62 نمبر ہے میرا, انور کامران جو ہے اس پہ جی. میں کہوں گا کہ آپ کینڈلی آخر میں آپ رہ صاحب, آپ اشفاق صاحب کو بھی آپ ٹائم دینا جی. رہ صاحب
0: جی, اشفاق صاحب آخر میں آپ کلوزنگ میں کیا کہیں گے؟
2: جی ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک بہت اچھے انسان ملے ہیں, اور سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ سوشل ڈیموکریٹک کو اہمیت دیں اور کامران صاحب کو ووٹ دیں, تاکہ وہ جو ہمارا کمیونٹی کا جو فیوچر ہے وہ ذرا ہمیں برائٹ نظر آئے. باقی یہ جو صاحب ابھی فرما رہے تھے سوشل میڈیا کے بارے میں, مجھے نام نہیں ان کا معلوم, انہوں نے بہت اچھا بتایا جو بھی بتایا. واقعی پاکستانیوں کو اس طرح کے مطلب احتیاط کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس لکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر لکھنے چاہیے, جس میں مسلمانوں کی یا اپنی کمیونٹی کی کوئی قدر کم نہ ہو. تو کامران صاحب کے لیے ہماری دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے اور سارے مسائل جو ہے نا وہ یہ ٹھیک کریں گے, سارے مسئلے حل کریں گے.
0: بہت شکریہ اشفاق صاحب, بہت شکریہ کامران صاحب. شاہ صاحب آپ اپنا عدنان سے آخری سوال کریں اور پروگرام کو بھی آپ ہی کلوز کریں.
3: جی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے یہ دو سویڈن کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے. تو عدنان آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو فلک مل ہوئی ہے ابھی وہاں پہ کیا, نہیں میں یہ نہیں سوال کروں گا, میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ابھی جو سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ہے, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے, انہوں نے 3 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کو جو ہے اکنامکلی زیادہ بڑھانے جا رہے ہیں, وہ اس کو زیادہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ہماری کمیونوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھیں और हमारी टैक्स पेयर के पैसे जो है वो यूक्रेन में जाके उसकी मदद करें जब वो अरबों के साथ बिजनेस कर रहा है।
4: नहीं सर साहब, ये तो उसने स्टेटमेंट दी गई है, इस पे नेगोशिएशन की जाएगी और इस पे देखा जाएगा, क्योंकि इस पे ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पे क्या कहते हैं इश्यू बना दिया है। मैं आखिर में एक चीज कहूंगा, ये दोनों भाई हमारे स्वीडन वाले सुन रहे हैं, ये चाहेंगे तो हम यहाँ से डेनमार्क से भी इनके प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमें इन्विटेशन भेजेंगे तो हम वहां पे भी जरूर आएंगे। वैसे तो हमारा चक्कर जरूर लगेगा इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि हम सेम पार्टी के हैं, कोई हमें बुलाएंगे तो हम इनके लिए भी हाजिर हैं, इनको हमारी जरूरत पड़ेगी।
2: जी वेलकम, जरूर,
1: बहुत शुक्रिया दान साहब,
4: आप वेलकम है, आप पता वगैरह ले लेना तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे, कोई मसला नहीं।
3: इंशाल्लाह सबको खुदा हाफिज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हम अपने कदम जो है वो दोबारा जैसे 70s और 80s और 90s में स्वीडन और डेनमार्क एक ऐसे इंसान दोस्त मुल्क होते थे, हम कोशिश करेंगे हम खुद को सुधारें तो ये खुद ब खुद हर चीज जो है ये ठीक हो जाएगी। तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, और राजा हुफूज साहब का शुक्रिया कि ये हम लोगों को पैगाम रसाने के लिए लोगों तक हम अपने जज्बात अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि यंग लोग आगे आ रहे हैं, और अब मैं इस बात पे राजी हूँ, खुश हूँ कि बस अब मैं रिटायरमेंट की एंड पे पहुंच चुका हूँ, और 77 जो है ये बहुत उम्र होती है, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे। तो अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज जी।
2: ओके जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया बहुत।
0: आपने सबकी बातें सुनी, चूँकि ये सारी चीज़ें जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ रिलेटेड होती हैं, तो लोगों के पास जो है आपको पता है स्वीडन का पासपोर्ट भी है और उसके बाद डेनमार्क की भी नेशनलिटी होती है, तो ये अवार्ड्स का चूँकि मामला है तो दोस्तों एक दूसरे को म्यूचुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह इंटीग्रेशन का रोल अपना जो है अदा करना चाहिए। समन, ये चूँकि इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है हमारा, किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहे, कोई अपनी राय देना चाहे किसी भी जमात का हो, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
5: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: सामान्य नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है जो आपके साथ भी शेयर करेंगे, हमारा हमेशा वादा रहता है हमारे साथियों का, दोस्तों का, जो अपनी गहरी नजर रखते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर, मसाइल पर, सहूलियात पर। तो सामान्य, इस वक्त हमारे मोहतरम हाजी असलम मेहर साहब सीनियर साफी हैं, हम एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। हाजी साहब, आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर।
6: शुक्रिया जनाब राजा गफूर साहब, रेडियो चैनल, टीवी चैनल, आपकी आवाज ये बेलौस अपने अवाम को खिदमत के जज्बे के साथ इंटरनेशनल मालूमात और मुकामी खबरें और पाकिस्तान और जहां जहां से भी हमें मुफीद बातें मिलती हैं हम अपने सामईन तक पहुंचाना इसे सदका समझते हैं। और मुझे अभी ये वही एक खबर मिली है कि मालमो के अंदर रिहाइश पजीर जो तालब इलम बच्चे अपना हाई स्कूल मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में दाखिला लेंगे 2 माह की छुट्टियों के बाद, यहाँ छुट्टियां हो चुकी हैं, और ये 15 साल से 22 साल के बच्चे जो हैं इनके लिए जैसे शीलैंड है कोपनहेगन और मालमो भी इसका एरिया इलाका जो है वो पूरा उनके लिए इन तालिब इल्मों के लिए बच्चों के लिए मालमो की जो कम्यून है जो स्टेट है हकूमत है उन्होंने इन्हें 2 माह के लिए इन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड उनके घरों में पहुंचा दिया है। ये 2 माह तक 24 घंटे यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टेट की हकूमत की बल्दिया की ये उसके अंदर ये मुफ्त सफर कर सकते हैं, 24 घंटे सफर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक मना सकते हैं, सैर कर सकते हैं, जहां इनका दिल करे गार्डन बाग उसी जगह पर जाकर अपने दोस्तों के साथ कोई हॉबी कोई मशगला फुटबॉल एक शहर से दूसरे शहर तक। और ये काफी मालमो का एरिया काफी बड़ा लंबा चौड़ा है ना, हेलसिंग बोर्ग इनका एक शहर है, वहां से लेकर अराउंड अबाउट जितना भी मालमो का تو یہ ایک خبر تھی جو ہم شیئر کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے سامعین نے ایک بات اٹھائی تھی کہ جی بہت سارے ملکوں میں پینشنرز اور طالب علم جو کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان کے لیے پاس کا اجرا جو ہے, میرے بچے جب چھوٹے تھے جب یہاں ڈنمارک میں یہ تعلیم کے لیے اسکول جاتے تھے تو ان کو فری کارڈ دیا جاتا تھا, لیکن ان کو اب پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں اسکول جانے کے لیے, وہ پاس بنواتے ہیں یا ٹکٹ لیتے ہیں. ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ان بچوں کے لیے اور پینشنسٹ جو آدمی ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, ڈینش ہیں, غیر ملکی ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کے لیے یہ مقامی طور پر اپنی اپنی کمیون کے اندر یہ فری ٹرانسپورٹیشن کا ایک اجازت نامہ یا پاس, جیسے یہاں معلوموں میں 15 سال سے 22 سال کی عمر کے بچوں کو ان کو ڈاک کے ذریعے گھر مل گیا ہے, وہ اب بچے انجوائے کریں گے, سیر کریں گے, تفریح کریں گے, فٹ بال کھیلیں گے, باربیکیو, جو ان کا دل چاہے, ان کو کار ڈاک کے ذریعے ان کے گھروں تک معلوموں کی حکومت نے پہنچا دیے ہیں اور فری ٹرانسپورٹیشن کے لیے.
0: حاجی صاحب یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں, بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. حاجی صاحب یہ مطالبات تو ہم اکثر مل جل کر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو سہولیات مل گئی ہیں. یہ تھوڑا سا 25-30 منٹ کا سفر ہے, بارڈر کراس کریں, ایک پل ہے جو ڈینش اور سویڈش آپس میں ملے ہوئے ہیں. چونکہ ہمارے چونکہ لوکل معاملات بھی سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, لوگ شاپنگ کرنے جو ہے بے شمار لوگ ویکینڈ میں شاپنگ کرنے سویڈن جاتے ہیں, سویڈن کے لوگ ڈنمارک آتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے اگر ممبر بن جاتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں, ہم ضروری تو نہیں ہے ممبر ہم کوئی پاکستانی نژاد یا غیر ملکی کو ہی کاؤنٹ کرے, جتنے بھی ڈینش پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ہی ممبر ہوتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اب اس میں ہم رہتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ سہولیات تو ہمیں یہاں ڈنمارک میں ملنی چاہیے, خاص کر پینشنسٹ جو ہیں ان کو فری پاس ملنا چاہیے. آپ سفر کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, آپ پاس بناتے رہتے ہیں. ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین کئی دفعہ بالکل ہی خالی ہوتی ہے, ڈبے بالکل خالی ہوتے ہیں. تو اگر کچھ دنوں کے لیے, چھٹیوں کے لیے یا جو پینشنسٹ ہیں کے لیے فری کر دیا جائے تو کتنا بوجھ بڑھتا ہے حاجی صاحب؟
6: رائے صاحب مین چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں میں کام کرتا تھا, آپ کام کرتے تھے, ہم دونوں بھائی ریٹائرڈ ہیں, پینشنسٹ ہیں, ہماری انکم جو ہے ایک معقول سرٹن اماؤنٹ ٹیکس کاٹنے کے بعد ہماری جیب میں ہمیں مل جاتی تھی نا. لیکن اب یہ ہے کہ اسکول کے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو عمر کے لحاظ سے ان کے پیسے بھی کم ہوتے ہیں اگر یہ کام کریں, ان کو لون اپ جو جیب خرچ ملتا ہے وہ بھی کم, اسی طرح پینشنس جو ہیں اخراجات تو ان کے بہت زیادہ ہیں, انہوں نے میڈیسن لینی ہے, اینک بنوانی ہے یا تھراپی کرانی ہے. آپ یقین جانے کہ آپ اگر سپیشل جگہ پہ جا کے آپ نے 50 سال 55 سال اس سے زیادہ ڈینش بھی ہیں, ملین کی تعداد میں غیر ملکی ہیں ڈینش ہیں, انہوں نے اپنی بیہینڈنگ اگر کرانی ہے تو بعض جگہ پہ 300-400 کروڑ کی وہ ایک کلاس ہوتی ہے, جس کلاس میں وہ ڈاکٹر آپ کی جو ہے ساری چیزوں کو مینٹین کرتا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کو ورزش کرتا ہے, آپ کی تھراپی کرتا ہے. تو یہ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن پینشن کم ہوتی ہے. لیکن ہم گزارش کر رہے ہیں نا اسٹیٹ سے, ہم دونوں بھائی, یہ بات مجھے بہت سارے پاکستانی ملتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے کہ اسلم آپ سیاست کی باتیں بھی کرتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن آپ پبلک کی بات جب ریڈیو پر کرتے ہیں خدا شاہد ہے ہم دعائیں بھی دیتے ہیں آپ کو, ہم آپ کا نام لیتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ریڈیو کا نام, اپنا ٹی وی کا نام, گراجا صاحب کا, اچھے کاموں کی تعریف بھی کرتے ہیں, گو کہ ہم کبھی مائک پہ نہیں آتے نہ کوئی فون کرتے ہیں آپ کو, لیکن ملاقات کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی واقعی پینشنسٹ اور طالب علم ان کی انکم اتنی نہیں ہوتی کہ اخراجات جو ہیں ان کے جو شوق ہیں, آپ دیکھیں ایک فٹ بال لینا ہے جو اچھی کوالٹی کا بچے نے کھیلنا ہے, کیا وہ 300-400 کروڑ سے کم ہوگا؟ نائک کے بوٹ کم کتنے مہنگے ہیں, کپڑے کتنے مہنگے ہیں, پھر سارے لوازمات ہیں. اب انہوں نے معلوموں والوں نے یہ خوشخبری دے دی ہے, کارڈ بھیج دیے ہیں, گھروں میں مل گئے ہیں, بچوں کو مل گئے ہیں, تو وہ 24 گھنٹے ان کو اجازت ہے, ٹائم لمٹ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو گزارش کرتے ہیں ہم سٹیٹ سے, حکومت سے, اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے اپلیکیشن دیتے ہیں, انسوئننگ دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ بھئی جو پینشنسٹ ہیں ان کا خیال کیا جائے, ان کو ان کی ہی کمیون کے اندر. ہاں کمیون سے باہر اگر آپ اور میں یا کوئی دوسرا آدمی جاتا ہے تو ہم وہ رائسے کارڈ ہوگا ایک ٹکٹ اور لے لیں گے, لیکن اپنی جگہ پہ رہنے والا ایریا جو جتنا بھی بڑا وسیع ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ان کو فری کارڈ یہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا ملنا چاہیے. جیسے معلوموں کے اندر طالب علموں کو 2 ماہ کے لیے دے دیا گیا ہے کہ آپ انجوائے کریں, آپ خوب اپنے چھٹیوں کو لطف اندوز ہوں, جہاں جائیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں کھیلیں بات کریں. ہاں جی, تو ہم گزارش کر رہے ہیں اسٹیٹ آف ڈنمارک سے, کمیون آف کوپن ہیگن سے اور دوسری کمیونوں کی طرح. میں یہ بات برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ آواز اٹھائی تھی اور معلوموں کا حوالہ دیا تھا کہ آپ یورپی یونین میں قانون تقریباً سبھی برابر ہیں, پھول سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں, خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے, رنگ مختلف ہوتے ہیں. ہم غیر ملکی ہیں, ڈینش بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہیں تو پھول ہی نا, اللہ نے بنائے ہوئے انسان بنائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہماری درخواست پر غور کیا جائے. اور پہلے جب ہم نے آواز اٹھائی تھی, اب بس نمبر 71, 72, 74 فیکس بہار میں آپ نے سہولت دی ہے تو ہمیں کوپن ہیگن میں بھی دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. بس یہ ایک نیوز تھی میرے پاس جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. سننے والوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام, دعائیں میرے لیے دعائیں.
0: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا,
6: بڑی مہربانی جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
7: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اوپر کے حوالے سے جو ہے نا، چونکہ ہمارے بہت سارے لسنر یا پاکستانی یا غیر ملکی اس فیلڈ میں بہت سارے شامل ہیں، تو وہ خبر ایک برننگ چل رہی تھی، تو ہم نے کہا شاہ صاحب نے اس چیز کو ٹچ نہیں کیا۔ شاہ صاحب، آپ بتائیں ہمارے سامعین ناظرین کو، آپ نے مہر صاحب کی بھی باتیں سنی، اس اوپر کے بارے میں بھی بتائیں۔
2: جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب، اس وقت دو بڑے برننگ خبریں ہیں جو عوام کو ہم دینے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے چھوٹا جو سبجیکٹ ہے وہ میں بتا دوں، اس کے بعد میں اوپر پہ آتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے فوج کا ہوتے ہیں، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹسٹ، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ جتنے بھی قسم کے ہم سوڈا واٹر پیتے ہیں، سوڈا وین پیتے ہیں، وہ دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دانتوں کا جو سفیدی ہے اس کو ختم کر کے تو وہ ڈارک یلو کور کو کرتے ہیں۔ یہ اخباروں میں آج خبر چھپی ہے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کس طریقے سے یہ بچوں کو بھی آپ سوڈا وین نہ دیں تاکہ ان کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اوبر کی، اب جو ہمارے اوبر کی تنظیمات بنی ہوئی ہیں، اوبر میں کچھ پاکستانی ہیں، ایک عدیل اسلم ہیں، انہوں نے بھی فیس بک پہ آرٹیکل لکھا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر ڈینش بھی شامل ہے، دوسرے فارنر بھی شامل ہے، کہ اوبر ہمیں لے دے گی ہے۔ لے دے گی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ یہ جو اوبر لا بنا ہے، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ کمپنیاں آ گئی ہیں، اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں کہ اب یہ ٹیکسی برانچ نہیں رہی، بلکہ یہ ایک برانچ ہے جو دبا بن چکا ہے۔ میں یہی کہوں گا، لوگوں کو برا تو لگے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ فلانے ڈرائیور نے یہ کر دیا، فلانے ڈرائیور نے یہ کر دیا، فلانے جو ہے وہ اوور انکم کر رہی، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، یا اس نے کارڈ زیادہ مار دیے اپنے ٹیکس میٹر کے اندر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ کتنے لوگوں کو، یہ بالکل حقیقت ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے، ان کے جو کمپنیز ہیں، ٹیکس کمپنیز ہیں، انہوں نے منسٹری نے نہیں بلکہ کمپنیوں نے ان کے نمبر بند کر دیے، اور وہ اب نہ ٹیکس وارمین رہے ہیں، اور نہ وارمین تو ہونے کی حیثیت ہی نہیں ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ گاڑی لے رہے ہیں، اور پرائیویٹ گاڑی خرید کر آپ جو ہے اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ ٹیکس میٹر لگوا لیتے ہیں، اور پھر کسی ایک فرم کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، کمپنی کے پاس، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بولٹ ہو، وہ ٹیکس کوپراؤن ٹیکس ہو، وہ اپنا اوبر ہو، کسی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ممبر بننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو نمبر ایشو کر دیتا ہے۔ وہ ایک نمبر جو ایشو کرتے ہیں، وہ ایک ٹلیلس ہے، ایک اجازت نامہ ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے اندر چلائیں گے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا ویسا کام کریں گے تو ہم یہ نمبر بند کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی ہے کہ لوگ اب ایک قسم کے سلیوری آبائٹ کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا، کیونکہ جو آئین ڈینش آئین کہتا ہے نا کہ ٹرانسپورٹ کا کام جو ہے، یا یہاں کے جو بھی آبش مین ہیں، ان کے گرون لا کے مطابق ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کی تنخواہ ان کو پوری ملنی چاہیے۔ تو یہ جو ٹرانسپورٹ کا بھی وہ جو اوبر قانون یہاں پہ لاگو ہوا ہے، اس سے جو ہے نہ وارمین اتنے پیسے کما رہا ہے، اور نہ ہی ڈرائیور جو ہے وہ اتنے پیسے نکال رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ختم ہونے کے لیے اب جو اوبر کے جو مختلف تنظیمات بنی ہوئی ہیں، جو فائننگ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ اول آڈیٹ ہے، ڈنمارک کے اندر یہ غیر قانونی ہے کہ آپ اب جب سے یہ اوبر قانون 2023 31 دسمبر سے شروع ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ سٹرائک نہیں کر سکتے۔ سٹرائک جو ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ آپ کی جو آپ جس کمپنی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ جس وقت چاہے آپ کا نمبر بند کر سکتے ہیں، آپ کو ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم سٹرائک کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کسی صورت میں بھی آپ کو سٹرائک کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے، और ये हुकूमत का फैसला नहीं बल्कि ये हमारा अपने लोगों का फैसला है। मैं अपने लोगों का इसलिए फैसला कह रहा हूँ कि उबर के लोग जो है जितने भी वोमेन बने हैं इन्होंने अपने मफाद की तरफ देखा, इन्होंने बगैर सोचे समझे जब मैं इसी प्लेटफॉर्म से ऊपर से आपका आपका टाइम लेके लोगों को ये बावर करने की कोशिश कर रहा था, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था 2017 से लेके लगातार 2024 तक कि खुदा रहा इस कानून को मंजूर ना करें। लोगों ने ये समझा कि हम नंबर ले लेंगे, हमें नंबर मिल जाएंगे, हम गाड़ियां डालेंगे या फिर उनको महंगी कीमत पे लोगों के आगे बेच देंगे। उसका उल्ट ये हुआ है कि अब ये नंबर जो है ये ना बेच सकते हैं ना ये आगे कर सकते हैं। क्यों? कि कंपनी जो है उसको अख्तियार दे दिए कि वो जिसको दिल चाहे नंबर अलाट कर दे, जिसका दिल चाहे नंबर वो छीन ले। तो ये जो कानून है इसके अंदर आप वोमेन कम और आपको एक प्राइवेट गाड़ी की हैसियत से, मैं डैनिश में ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इस कानून के ऊपर न्यू टैक्सा लॉ गिवनिंग के अंदर के हाउ इन एंड मेनली बिल तो फो इन सैलरी टिलैरिटी हियर सम टैक्सा, तो इसका कोई तल्लुक नहीं है टैक्सा ब्रांच के साथ। वो ये कहा गया कि आपको चलाने की इजाजत है एज ए टैक्सी, लेकिन आप टैक्सी वो पुराने लॉ गिवनिंग में नहीं आए। तो मैं फेसबुक पे जो लोग लिख रहे हैं मैं उससे ये इल्तमास करूंगा पहले आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मैंने सिकंदर मलिक और दूसरे सांसदानों से बात की है, वो आपकी आवाज उठाने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं, वो आपको आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं या रेडियो पे यहाँ राजा गफूर साहब के रेडियो पे आप रब्ता कर सकते हैं और यहाँ आके अपने बयान दे सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आप अपनी वैल्यूज को वापस ला सकते हैं क्योंकि ये कानून जो है ये फैसद नहीं है। जब आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप सड़कों पे जाके गाड़ियों को जाम नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते टूर उठाने को, क्योंकि इस तरीके से जैसे इन्होंने चंद लोगों के पहले नंबर छीने हैं इस तरीके से राजा साहब ये नंबर दोबारा बंद कर देंगे और उनकी जगह ये नए लोगों को ले आएंगे या कंपनियां अपनी गाड़ियां डालकर और उसके साथ ये क्या करेंगे कि ये ड्राइवर्स को हायर कर लेंगे और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाएगा। इस तरीके से वोमेन की जो पोजीशन है डेनमार्क में वो टोटल खत्म हो जाएगी और ये लोग जो है ऑटोमेटिक गाड़ियां ले आएंगे जैसे लंदन में कुछ चल रही है, अमेरिका में कुछ चल रही है, एशिया में कुछ चल रही है। तो ये अगर ऑटोमेटिक गाड़ियां ले आए तो यहाँ पे जो टैक्सी ब्रांच है वो बिल्कुल खत्म होकर आ जाएगी और आबाद से जो है जो बेकारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग जो है वो जिन्होंने बड़े बड़े वेले बड़े बड़े घर लिए हुए हैं वो अपना घर नहीं चला सकेंगे। और क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग जो है फॉरनर्स जो है ये रिलेटेड है टैक्सी ब्रांच के साथ, तो जब टैक्सी ब्रांच है ही नहीं तो फिर इसको हम क्यों एक्सेप्ट करें। हम जाकर ये कह सकते हैं कि ये उबर कानून जो था इसको हमें, मैंने जो टैक्सा वाले थे इनसे भी इल्तमास की थी और दूसरे सेल्स के से भी इल्तमास की थी और ये जो अपना उबर वाले मैंने इनको कहा था कि उबर को आने दें लेकिन आप अपनी टैक्सा गवर्नमेंट की हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने फायदा ये देखा कि हम गाड़ियों को बेच के फायदा कमा सकते हैं, नंबर बेच के फायदा कमा सकते हैं, तो उससे इन्होंने अपने पांव पे खुद कलाड़ी मारी है। तो राजा साहब ये उबर जो है ये अब ये जो उबर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उबर असली कंपनी बल्कि अब इतनी कंपनियां आ चुकी हैं डेनमार्क के अंदर कि अब तो चार चार पांच पांच जो बंदे हैं वो दो दो बंदे मिलके अपने कंप्यूटर पे जो कोपेनहेगन से बाहर रह रहे हैं, जो छोटे छोटे गांव में रह रहे हैं, छोटी छोटी कम्यूनों में रह रहे हैं, वो अपनी टैक्सियां चला रहे हैं और इसका सबूत हमारे पास है। तो जब ये कानून की वायलेशन हो रही है इस तरह तो क्यों हमारे लोग जो हैं वो अपने राइट के लिए आवाज नहीं उठाते हैं और सियासतदान जो है वो कहते हैं अगर ये हमसे बात करें हमारे सामने ये इकट्ठे हो तो हम इनकी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन तैयार किस तरीके से है कि उनके पास आपके पास कंक्रीट ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उनको ये बता सके कि ये जो कानून बना हुआ है ये यहाँ के आईन के भी खिलाफ है और हाउस गार्ड जो थी डेनमार्क की उसने जो है इसको टोटल बैन कर दिया था उबर को। तो अगर ये बैन कंपनी जो है अपनी मुद्दत से पहले वापस आ सकती है डेनमार्क में तो फिर ऐसे क्रिमिनल्स या ऐसे लोग जिनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया हुआ है और जिनको इन्होंने कहा है, तो फिर उनके लिए भी कानून होना चाहिए कि वो दोबारा हाईस कोर्ट में अपनी अपीलें करें और उनको भी इजाजत होनी चाहिए ताकि वो वापस जो है इस मुल्क के अंदर आ सके। तो ये जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही है, और
1: लेकिन ना कि मियां मुनीर अहमद साहब जो हैं वो सदर रहे, चेयरमैन रहे और ख़ुद भी टैक्सी चलाते भी हैं, फोन मैन भी हैं। इसी तरह असलम साहब जो है वो भी इसके फोरमैन रहे, चेयरमैन रहे और ख़ुद भी वो टैक्सी चलाते, इस कारोबार से मुंसलिक है। इसी तरह जो मौजूदा जो चेयरमैन बने हैं, तो ये सारे लोग जो हैं इन क्या ये बात नहीं करते या इनके पास तो बड़ा नॉलेज है?
2: देखिए जी, मैंने ये कहा ना, मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन लोगों ने जो पहली चीज थी उसके ऊपर ख्याल रखा कि शायद हमारी जो बीइंग ए बोनमैन हमारी पोजीशन ज्यादा अच्छी होगी और हम लोग जो है वो पावरफुल ही रहेंगे। लेकिन अगर कानून को समझ जाते तो आज ये इस मसले में हम ना गुजर सकते होते। मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, मैंने टैक्सी ब्रांच को खुदा हाफिज कह दिया, लेकिन मेरा क्योंकि मैंने 51 इयर्स इस ब्रांच के अंदर काम किया है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ब्रांच जो है ये वापस आए और लोगों के हकूक मिले। अब मसला क्या होता है कि डैनिश 1,000 करोड़ कमाए तो वो तो घर चला जाता है, उसके लिए 1,000 करोड़ ना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसने ना अपनी फैमिली को देना है ना किसी को देना है, उसको पता है मैंने कम्यून से कैसे पैसे लेने हैं, उसको पता है कि मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट पे कैसे रखना है, उसको पता है कि मैंने कोई सस्ती सी गाड़ी डाली हुई है और मुझे इस गाड़ी का इतना अखराजात नहीं देने पड़ते, तो वो अपने एक जो है मिनिमम या मैक्सिमम वो निकाल के पैसे घर चला जाता है। हमारे जो पाकिस्तानी या टर्किश या दूसरे हैं, इन्होंने महंगी से महंगी गाड़ी, ये नहीं सोचते कि मैं एक छोटी सी सस्ती सी 2 लाख की गाड़ी ले लूं, ये कहते नहीं जी हमने 5 लाख की, 6 लाख की, 1 मिलियन की गाड़ी लेनी है, उससे हमारा शो हो जाएगा। देखिए ये सारा फायदा जो है आप टैक्स वालों को दे रहे हैं, आप मम्स वालों को दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट वालों को दे रहे हैं, आप खुद क्या कमा रहे हैं, आपकी खुद सेविंग क्या है? आप इतना पैसा लगा के अगर कोई दुकानदारी करते तो आप ज्यादा कमाते, आप इतनी सर्विस देते हैं लोगों को, आपकी नशे ही बैठ जाते हैं आप, ऑफ हेल्थ का हर किस्म की प्रॉब्लम है। अब इस कानून के अंदर आप किसी को सवारी के साथ लड़ भी नहीं सकते, अगर आप लड़ेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा और वो आपके खिलाफ जाएगा, क्यों कि आपकी प्राइवेट गाड़ी है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये मैं शायद आप गलत बात करते हैं, वहां ही मैं उनको कानून में पढ़ाता हूँ कि ये आप किसी भी सवारी को अगर वो पैसे नहीं देती है, आपकी गाड़ी से बाहर निकल जाती है, तो आप उसको जो है उसको हाथ नहीं लगा सकते, आपका वॉल्ट का केस आप पे बनेगा, तशद्दुद का केस आप पे बनेगा। तो राजा साहब ये चीजें जो
1: मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखिए ना आपकी ब्रांच में, इस ब्रांच में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट भी इस चीज़ को जो है चलाते हैं और पीएचडी वाले लोग भी जो चलाते हैं, उसके अलावा बाशऊर लोग भी चलाते हैं। तो शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मसाइल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब आकर हल करा देंगे, नवाज शरीफ साहब आकर हल करा देंगे, या कादरी साहब आकर हल करा देंगे, या इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब हल करा देंगे, जरदारी साहब आकर हल करा देंगे, नैम जितनी भी सियासी जमातों के लीडरान हैं तो ये आकर हल करा देंगे?
2: नहीं, वो तो कहेंगे इसको और बढ़ाओ, इनको और दबाओ, ताकि ये जितनी गुर्बत में जाएंगे वोट हमें देंगे, क्योंकि जब आदमी अमीर हो जाता है तो फिर वो थोड़े से नखरे दिखाता है तो वो

0: तौर के ऊपर, और दूसरी चीजें उनको सारी प्रूफ दी है कि किस तरीके से ये ऊल ऑडिट है सेल्स के पे, और ये यहाँ के
1: साहब
0: जो
1: आप जान
0: हमारे
1: के आप ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी ब्रांच के साथ, अपने लोगों के साथ, ब्रांच से मुराद है टैक्सी ब्रांच की बात कर लूँ, फिर भी आपकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं।
0: जी मेरी नेशन है, मेरे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं, अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं। किसी को पता है कि मैं सड़क पर निकल रहा हूँ, मेरे घर में सलामत आना या नहीं आना, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा लाइसेंस चला जा सकता है, गाड़ी बाहर खड़ी हो सकती है, आप ड्राइवर नहीं चढ़ा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बल्कि जो चीज हम कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30-32 हजार करोड़ की जो, या 25-30 हजार करोड़ जो है, ये बहुत बड़ा जो काम कर रहा है, जो लाख कमा रहा है, वो इतना पैसा खुद अपने घर में लेके जा रहा है। लेकिन क्या उसका मुस्तकबिल क्या है? सुबह अगर खुदा ना खासा वो बीमार हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, या उसके इलेक्ट्रॉनिक इल पिल जो है वो वर्कशॉप में जल जाती है, उसको 5 से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये बातें करने का हल नहीं है। इसका अमलन ये है कि अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी अगर ये लोग जो हैं अपने सियासतदानों के साथ बैठ के उनसे बात
1: तो शाह
0: करें
1: साहब
0: इसके
1: आपके
0: ऊपर।
1: नॉलेज में है कि यहाँ जो लोकल पाकिस्तानी सियासी जमातों के लीडरान है, किसी ने आवाज़ उठाई है आपके साथ मिलकर?
0: नहीं जी, मैंने वीकेंड में फेसबुक पे चौधरी अदनान असलम का मैंने आर्टिकल पढ़े फेसबुक पे, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी परेशानी का लिखा। उससे पहले भी जो है टैक्सी फॉर्म, उसके अंदर मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसके अंदर भी काफी। तो अब जब इन्होंने लिखा कि हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, हम हड़ताल करना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप कानूनी तौर पर हड़ताल नहीं कर सकते, उसकी ये वजूहत है। तो वो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इससे बेहतर यह है कि आप सिग्नेचर्स ले लें, आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके सिग्नेचर लें तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो सिटिंग काउंसलर्स हैं, सिटिंग काउंसलर्स जो है उनके उनको बहुत बड़ी बात है, वो कह सकते हैं कि ये लोग जो वॉनमैन है या जो उबर के साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे अमगोर में काम कर रहे हैं, ये हमारे साथ काम कर, हमारे रिहायशी हैं, तो इनकी अगर इनके इनसे जॉब चलेगी तो हमारी कम्यूनिटी पे बड़ा असर पड़ेगा। तो वो कानूनी तौर पे एक्शन कम्यूनिटी ले सकती हैं, और इसीलिए कोपेनहेगन कम्यून के अंदर बैठे हुए हैं सिकंदर मलिक। तो मैंने सिकंदर मलिक से बात की, तो उसने सारी बात तो पढ़ा भी और सुना भी, और उसकी नजर भी है शुरू से टैक्सी ब्रांच के बारे में। तो उसने कहा कि अंकल जी आप बेफिक्र हैं, मुझे अपने भाइयों का ख्याल है, वोट दे ना दे मैं इनकी पूरी मदद करूंगा, हर चीज से मदद करूंगा। तो उसने मुझसे वादा किया, और इसी तरीके से 2-3 दूसरों से मैंने बात की है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप हमारा नाम ना लें। मैंने एक डेनिश सिटिंग बॉम मिनिस्टर से बात कोपेनहेगन में किया, उसने भी कहा कि मैं ये अभी जा रहा हूँ बॉर्नहोल्म जा रहा हूँ, तो मैं वापस आऊंगा, तो मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर टाइम दूंगा ताकि आप आकर, पहले भी मेरी उससे बात हुई हुई है और काफी टैक्सा बोनमैन मैं लेकर साथ गया था, तो वो भी जो है वो भी बात सुनेगा, और जितनी उनसे बात वो आगे लेके चल सके अपनी पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट बेसिस पे, तो लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन इसके साथ हमें सारों को एक इत्माद में रहना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए,
1: इतमाद
0: और
1: में
0: अगर
1: रहना
0: कोई
1: चाहिए, इताद होना चाहिए। शाह साहब हमारे साथ साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके साथ हाजिर हूँ, हमारे साथ रहिएगा। समय नाज़रीन, ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, जिनकी आप बात सुन रहे थे, वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। उन्होंने बड़ी खुल कर बात की और उन्होंने सारे हालात बताए। उसके अलावा जो टैक्सी के मसाइल हैं, चूँकि ये ख़ुद इस ब्रांच में रहे, और ब्रांच में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है वो बहुत सारी नॉलेज होती है। जब आपके पास नॉलेज होती है तो फिर आपको मालूमात भी मिलती हैं, जब मालूमात मिलती हैं तो फिर सारे काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो हम
0: जी
1: ज़िम्मेदारान से
0: भाई आप
1: रब्ता कायम
0: कौन
1: करेंगे। आपको पता है कि टैक्सी ब्रांच का नॉलेज हर आदमी के पास नहीं होता, ना हर आदमी को समझ होती है कि अंदर के क्या मामलात हैं, बाहर के क्या मामलात हैं। तो जब ये हमारे लोग, हमारे शहरी जो स्टैंड सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, तो जब ये गाड़ी भी चलाते हैं, तो ये एक चलता फिरता एक मीडिया होता है जो लोगों से मिलते रहते हैं, हर चीज़ अपनी आंखों से देखते रहते हैं। तो इस वक्त मियां मुनीर अहमद साहब, जो कि टैक्सा यूनियन के फोरमैन रहे, ان کا چونکہ ذکر ہوا تو میں نے کہا ان کو بہتر کون جو انفارمیشن دے سکتا ہے, اسلم صاحب کا بھی ذکر ہوا تو میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے حالات میں یہ جو اوبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کے پاس اس فیلڈ

0: पर बड़े एक्टिव है, यहाँ के पढ़े हुए हैं, डेनमार्क की पैदाइश है इनकी, स्वीडन में भी रहते हैं, डेनमार्क में भी रहते हैं और इलेक्शन पर भी बात करते रहते हैं, आप अक्सर इनको सुनते रहते हैं, जो सितंबर में स्वीडन में इलेक्शन हो रहे उस पर भी अपनी राय देते हैं, डेनमार्क में जो कम्यून के इलेक्शन हुए, पार्लियामान पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उस पर भी अपनी राय देते रहते हैं। तो हर जमहूरी आदमी को अपनी राय जो कम्युनिटी के साथ रिलेटेड होती है उस पर हर आदमी को अपनी राय देने का हक है। तो शायद साहब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: जी शुक्रिया आपका।
0: शायद साहब आपका एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक मजमून पढ़ा, बड़ी अच्छी तहरीर आपने लिखी है कि मैं थोड़ी सी पढ़ता हूँ, सवाल भी ये समझ ले और इसको भी समझ लिया। आपने लिखा, आपको तो डेफिनेट हर चीज़ का पता है, ये जो हुकूमत आई थी आपकी जो है वो इमरान खान साहब की, और उसके मिनाजुर कुरान वाले दोस्तों ने इमरान खान की हुकूमत आते ही अगले रोज मॉडल टाउन कतलेआम पर खान से मुतालबात शुरू कर दिए, ये इस तरह क्लास प्लस बात नहीं है। जबकि खान साहब को वज़ीर आज़म ने अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था खान साहब को बने, खान साहब ने इनसे बैक चैनल बात भी की और नहायत अदब से पैगाम भी पहुंचाया कि कादरी साहब कनाडा से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कोई चीज़ है वो पेश हो, 2014 की इस कोर ओपन, उसको कोर में ओपन करेंगे हमारे लिए, अपने केस में अदालतों से लगे हुए हैं। खैर खान साहब की हुकूमत चलेगी 2022 में, लेकिन मजाल है इन्होंने हुकूमत मौजूदा हुकूमत से कभी कोई मुतालबा किया, और फिर 2013 और 2018 को इन्हीं कातिलों की हुकूमत थी, आप इस पर क्या कहेंगे?
1: जी साहब आप भी बड़े यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, आपकी हर जगह नजर होती है। ये आर्टिकल तकरीबन 2 माह यानी कि पुराना हो गया है और ये ऐसे था कि मुझे आपने अभी बात की है तो मुझे तब याद आया। तो ये ऐसे थे, ये कोई सोशल मीडिया में कोई थोड़ी बहुत बहस चल रही थी, तो उसमें ये मनाजर खान के अपने दोस्त हैं सारे, ये एक अदारा है और जाहिर बात है हमने बचपन में नमाजें जुम्मा उधर पढ़ा जाते रहे हैं, सब दोस्त हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं कभी इनसे बहस में नहीं उलझता, खासकर दीनी बहस में। तो लेकिन जब मेरी नजर से एक गुजरा कि बंदे बहस कर रहे हैं और हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में हमारी नहीं है, पीटीआई की, ये सबको पता है, और 4 साल हो गए हैं हुकूमत, आपको पता है कि नून लीग की है और वो हर चीज का इस वक्त जिसकी हुकूमत होती है वही इन चीजों का जो होते हैं क्या कहते हैं उसके क्या उर्दू का लफ्ज़ है उसके उनका होता है इसके ऊपर सारा कुछ, यानी कि अब आप मुझे समझ जाए। हाँ तो वो जब मैंने वो पढ़ा कि लोग खासकर मैं नाजुल खान के दोस्त वो ब्लेम दे रहे हैं पीटीआई को के और हां साहब को के हमारे जो सानिहा हुआ था उनका क्या कहते हैं मॉडल टाउन में 2014 को उस पर बात चल रही थी, तो मैंने वो पढ़ा उसमें ब्लेम दे रहे हैं कि खान साहब ने इसके ऊपर कोई नहीं हमारा साथ दिया और खासकर, और मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं पहले मैं समझा कि पता नहीं ये कोई पुराना 5 साल पुरानी कोई मैंने वो निकाल दिया है, मैं देखा यार ये तो फ्रेश है बिल्कुल जब मैंने देखा ये बिल्कुल नया अभी का, ये मई की बात है, और मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। हर मैंने फिर उनको लिखा सबको एक ही आर्टिकल, किसी का जवाब नहीं आया, तो मैंने उनसे ये पूछा, यही पूछा सबसे, सब दोस्त हैं, मैंने कहा यार भाई लोगों मेरे दोस्तों हम इमरान की हुकूमत आते ही आपने आते ही 2018 मैं मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा लेकिन चलो थोड़ी सी तमीज बांधनी पड़ेगी, मैंने पूछा उन सबसे कि इमरान खान की हुकूमत आते ही 2018 को आई थी, अगस्त को हलफ उठाया था खान साहब ने, एक हफ्ते बाद आप लोगों ने इमरान खान से मुतालबा शुरू कर दिया। तो जब वो मुतालबा इन्होंने उनको प्रेशराइज किया तो खान साहब ने यही पैगाम भेजाया कि आप आए अपना कादरी साहब कनाडा से तशरीफ लाए, सारी बात उनको कदर की निगाह से देखते हैं खान साहब और कदर की निगाह से देखना भी चाहिए, एक आलम दीन है और वो दीन को हमारे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, दीन सिर्फ जो है मैं अपनी भी बात सबकी बात करता हूँ, दीन सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए नहीं होता, उस पर खुद भी अमल करना होता है। तो वो उन्होंने यही कहा कि आप आए तो आके ना अपना जो केस है वो अदालतों में दायर करें, हमारे अपने भी केस लगे हुए हैं, हमारी हुकूमत है और हमारे अपने भी केस लगे हुए हैं, आपको पता है ये इस बात का सबको पता है, हमारे पीटीआई के केस हुकूमत होने के बावजूद भी लगे हुए थे, तो आप आए करें, नहीं आए है, ये चलती रही, ये सिलसिला चलता रहा, या मैं बिल वास्ता या बला वास्ता हमारे साथ किसी भी महफल में बैठते तो इसमें बात छेड़ देते थे, तो हमारे साथ भी इधर भी, तो हम कहते थे हम कोशिश करेंगे यार, या क्या यही करना है ना, साथ सबके साथ सबको लेके चलना है।

0: खैर 2022 में हान साहब की कुमा चले गई, सबको पता है, जैसी भी गई वो एक लदा बहस है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी, बस ये पूछना सबसे।
1: बिल्कुल आपकी अच्छा, आवाज आ रही है किबला जूर मदिला कादरी साहब, इसी तरह पूछते हैं आवाज आ रही है।
0: मैं हाँ बिल्कुल, मैं उन देखे ना, मैं उनके कितना एहतराम करता हूँ और उनके ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ जो वो दीनी बातें बताते हैं, और जब मैं चलने की कोशिश करता हूँ मुझे पता वो भी चलते हैं इसी तरह। तो वो ना क्या हुआ कि 2022 में कोमा चल गई पीटीआई की, और आज ये 4 साल तो खत्म हो गए हैं, मई गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, आज 5वां साल शुरू हो गया। सर मजाल है इन्होंने, यानी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जिनकी हुकूमत है, जिनकी हुकूमत के दौरान 2014 से लेके 18 तक हुकूमत रही थी पहली इन्हीं की, उसमें ये वारदात या सानहा हुआ, मैं अभी भी इसकी मजम्मत करता हूँ और बड़ा अफसोस है। और इसको हम सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हमने उठाया, इन्होंने भी उठाया, हमने उठाया इसको और अभी भी उठाते हैं। सारी बात है पक्ष निभाई है सब, कोई भी हो उठाया, क्योंकि हम इसकी मजम्मत करते हैं, किसी को आप कत्ल नहीं कर सकते कोई भी हो। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये इसका परिमिट है कि जिसने भी किया इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हुकूमत जिनकी थी वो इसके जिम्मेदार होते हैं। मैंने इनको कहा, ये लिखा आर्टिकल कि आप अब 5 साल होने लगे हैं, आप आए आपकी आप देखें इसमें, फिर इसमें इसको फिर इसको मुनाफकत कहते हैं, इसी को मुनाफकत कहते हैं। आप बजाय इनको कहने के हमें कह रहे हैं, अभी भी इसका दुख हुआ। फिर मैंने आर्टिकल लिखा, अच्छा एक तमीज के दायरे के अंदर मौजूद है
1: वाले मुनाफकत कर रहे हैं,
0: नहीं मैंने कहा इसको मुनाफकत कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर रहे हैं। मैंने एक पैरा लिखा, ये देखिए मेरा पैरा सुने, ये आज ये उस आर्टिकल में से एक पैरा है, ये दोस्त मनाजिर कुरान वाले आज तक नवाशी से इस मॉडल टाउन कतलेआम का बराए रास्त कभी नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, उसके बाद इनसे इनकी मुनाफकत और हान से जाती हसद का अंदाजा होता है, अंदाजा होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये हैं अंदाज जो कह रहे हैं,
1: खान साहब के तो कादरी साहब के बड़े जलसे जुलूसों में बड़े अच्छे तालुकात थे, बड़ा इज्जत और इत्राम से दूसरे का नाम लेते थे और कजन भी थे आपस में।
0: मेरे आर्टिकल पढ़े ना, मैं इन सबको डायरेक्ट नहीं कह रहा, किसी जिन्होंने ये लिखा है इनमें बड़े अच्छे लोग हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं, इनके जो इनके दायरे के अंदर जो काम करते हैं सब अपने इनके जो मेंबर हैं, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनसे पूछें यार ये क्या आप कर रहे हो, किसके लिए करते हो, क्यों करते हो ये काम। आप में अगर हिम्मत है तो यार, मैंने तो ये भी लिखा है हमारे अपने 2024 में इस्लामाबाद लोग गोली मार दी गई उनको, 2024 की बात सानिया हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही वो बात की बात है, ये हमारा मसला है, इसके ऊपर आपने कभी बात की नहीं, कभी नहीं करेंगे, किसी सियासी पार्टी ने तो की नहीं है ये तो मुझे पता सबको, इन्होंने की नहीं, ये फिर ये तो हो गया ना कि अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपनी चीजें रख ली हैं, हमने तो सबके ऊपर की। हम तो अभी भी मनाजिल कुरान के जो सानिया हुआ था वो एक अल्लाह ना करे किसी के साथ हो उसके ऊपर, और ये हमारे जो हमारे से क्या मरा था ये भी आपके ही है, ये जो साना 2024 में हुआ था उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं, और साथ में मरीद के वाकया जो भी हुआ वहां सानिया तो हुआ था ना उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगे कि क्यों हुआ, किसने किया, हर मुल्क में इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर सीधा तो कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे रहा, मैं तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दूंगा कि गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है कि किसी किसी अहलकार से गोली चली है, क्यों चली है, उसको फिर रिजाइन देनी होती है, उसके ऊपर केस होता है या उसको सजा होती है, जैसे इधर भी हो जाता है वाकया, यूरोप में भी हो जाता है, बड़ा बहुत बड़ा अमेरिका में भी हो जाता है, अमेरिका में होते रहते हैं ये वाकया कि पुलिस वाले ने कहते हैं किसी के ऊपर हमला करके तो दो बंदे मार दिए तीन, ये आपको पता ही है। तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये
1: वकील होते
0: हैं, ये फिर इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती हमारे जैसे मुल्कों में जिसमें एशिया हो गया इंडिया पाकिस्तान, इनमें ऐसे नहीं होती, आपने खुद हिलना होता है जाना होता है, बजाय कि आप मीडिया में जाके इसको उधर उधर मकारियां करें, उधर जिसकी हुकूमत नहीं है उसे करें, और अल्लाह करे अगर हम इमरान खान की हुकूमत अभी भी आ जाती ना आज ये फिर शुरू हो जाएंगे इमरान खान के खिलाफ के आप वो उठाएं। लेकिन मजाल है कि इस जो हुकूमत आई हुई है इसके ऊपर ये बात करेंगे कि हमारे जो जो वो है जाएं यार अभी जाएं पाकिस्तान जाएं, हम अपने लगे हुए हैं, हम आपकी अभी भी मदद कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आप जाएं पाकिस्तान खुला सारा कुछ जाके अपने करें, उधर हमारे नहीं कारकुन हुए शहीद, मरे नहीं है, पकड़े नहीं गए 30,000 के करीब, क्या हो गया, आप भी अपने कारकुन जाके पकड़वाएं, 30,000, ये कोई ऐसे नहीं होता, ये आपको आपको इन इनके साथ लड़ना पड़ता है, ये जो गुमते इस तरह की आ जाएं तो आप जाएं, ये तो नहीं होता कि आप बैठ गए हैं पीछे और अल्लाह को याद करना एक अलग बात है, वो तो मेरा जाती मामला है। मैं अल्लाह को याद करता हूँ, मैं लोगों को दिखा के थोड़ा करता हूँ, करना है तो मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं अल्लाह कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह के साथ मामला है। ये भी हमारे मुल्क में एक कंसेप्ट बड़ा पुराना, आहे तू नमाज नहीं पढ़ देते, तू मनु तकिया नमाज पढ़ दे, आहे तू जुमा नहीं पढ़ दे, तू तकिया मनु, मेरी तो इबादत अल्लाह के साथ है।
1: ये
0: एक
1: कौन
0: मैं
1: आपको
0: जनरल
1: कहता
0: बात
1: है आप नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा नहीं
0: नहीं,
1: पढ़ते?
0: मैं ये बता रहा हूँ, एक जनरल हमारे अंदर कंसेप्ट पर्सन में ये बन गया हुआ है, ये जाए ना तो ये लोग करते हैं ऐसे, आपको पता भी है इस बात का, जब तक वो किसी को देख ना दे नमाज पढ़ते, यकीन नहीं आता ये कि तू अल्लाह है, तीनों में बहाना है, यानी कि वो जब खत्म शतम दुरूद शरीफ ये पढ़ूंगा बैठ के लोगों के सामने रोज जाके, तो फिर पता लगेगा ये दीनदार है, अंदर से वो कितना शैतान है। इससे अच्छा है कि फिर यानी शैतान ही चंगा है, जरा जरा नजर दे आ रहे हैं ना कि शैतान है, कि ये दो दोगले मैं करूं, दीन को भी इस्तेमाल करूं, यही होता है ना हमारे पूरे, इसलिए तो हम पीछे रह गए हैं पूरी दुनिया से, ये हिता ही पीछे रह गया है एशिया का जो है तकरीबन, ये चाइना को निकाल के, ये इन इन चीजों की वजह से मुसलमान हिता जो खासकर है इन मुनाफिकत की वजह से। तो आप जब अपने दीन आपका लहदा है करें, अच्छी बात है, वो उसकी सबकी वो सबको होना चाहिए, लेकिन किसी को ना आप कहें कि तू नहीं आंदा, मैं तेनू दस के आना, कितने मैं जाना कितने नहीं जाना।
1: लेकिन शायद आपको जानते हैं, आपकी तो पैदाइश यहाँ की है, यहाँ तो हर जगह जाने की भी आज़ादी है, बात करने की भी आज़ादी है, यहाँ तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कभी दीनी डिबेट्स होती हैं, यहाँ तो आज़ादी है हर चीज़ बात कहने की।
0: देखिए जी, मैं फिर कहूंगा, आपकी आजादी की बात मैं लेकर करता हूँ बाद में, मैं फिर कहूंगा, मेरी किसी के साथ कोई ये जो अदारे हैं खासकर मनाजुल कुरान हो गया, कोई भी हो गया, मैं देखे खुल
1: नहीं,
0: के
1: मैंने
0: बात
1: तो
0: कर रहा हूँ,
1: कभी आपके मुंह से बात नहीं
0: किसी
1: सुनी।
0: हाँ किसी नहीं हुई, जब ये मैंने पढ़ा है, मई की बात है, 2026 इसी में 2 महीने पहले की बात है, 22 तारीख थी गालिबन 23 तारीख, तब मैंने ये पढ़ा है, वहां जाके एक बहस चल रही थी और उसमें मैं हैरान हो गया, मैं कही यार ये तो उल्टा साहब है, गवर्नमेंट जिनकी है उनसे सवाल नहीं कर रहे, नाम ही नहीं ले रहे, शहबाज शरीफ हमारे यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना इस वक्त, पीएम वो है ना, उनसे करें, क्यों नहीं जाते उनके पास, आप करें ना, उनके पास जाना है ना आपने, बजाय कि आप कहेंगे कि ये नहीं, ये पीछे बैठ के आप कुछ और बातें करेंगे कि नहीं ये उनकी हुकूमत नहीं है, है ना, जाएं उनके पास जाके कहेंगे जी ये हमारा केस है 2014 का, इसमें हमारी मदद करें, तो सारी बात है, वो भी ये कहेंगे आप अदालतों में जाएं, जब आप अदालतों में जाएंगे, जब वो नहीं खोलेंगे केस, फिर बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर करेंगे जी महाराज ये के जो ना केस नहीं खोल रहे, जो इनका केस है सारा, वो जो आपकी जो जो क्या कहते हैं पिटीशन है, जो आपकी पुरानी पिटीशन है उसको ही खोलना ना, पुट अप करना उसको, जब आप उसको खोलने के जाएंगे, नहीं खुलेगी, फिर बात करते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ये हमें ये इसके पर इनका प्रेशर है, ये खोलने नहीं दे रही है, पता तो लग जाता ना, बजाय
1: लेकिन
0: उसके
1: इन ममालक में, ये जमहूरी ममालक में, यहाँ पर जमहूरियत के खिलाफ बात करना बड़ा अजीब है, ये लोग तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते।
0: बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये लोग इन चीजों को नहीं पसंद करते, तो आप बजाय यही कह रहा हूँ, आप अभी भी मेरे इन दोस्तों से अपील है, अगर अभी अब मुझे मुझे मुझे पता है सबको रंज है, ये जी सानिया हुआ था उसकी कोई किसी को अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उसकी, कोई
1: नहीं, हर
0: वो
1: किसी को
0: दुख
1: दुख है, पाकिस्तान के कोने से
0: है,
1: लेकर दूसरे कोने तक।
0: दूसरे कोने तक चूंकि जंग से लोग आए थे, साहिवाल से आए थे लोग, वो खानदान के खानदान आए थे, बड़ा दुख है यार, वो मैं उसको बुला नहीं सकता, ये अपने जो मरा हुआ था उसको छोड़ दे, इनका भी इनका बड़ा दुख है, लेकिन गवर्नमेंट भी किसकी है, उन्हीं की गवर्नमेंट है जिन्होंने 2014 में आपके ऊपर गोलियां चलाई थी पंजाब से, और सीएम पंजाब का शहबाज शरीफ था
1: क्या पता
0: सर,
1: चलाई थी या नहीं चलाई थी, अभी साबित तो नहीं हुआ।
0: वही तो मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की गवर्नमेंट थी और उन्हीं को ही आपने जाके उन्हीं के खिलाफ आपने या जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन उनको कहीं करवाई है इसकी, वो नहीं करवाते, फिर आप अदालत से अपील करें, अदालत फिर वही इसको ना देगी हुक्म, अदालत हुक्म दे सकती है, किसी को भी दे सकती है, वो जो भी है, मुझे तो अदालती जो पाकिस्तान के निजाम का नहीं पता, लेकिन अदालत तो है ना, अगर नहीं है तो फिर आप जाएं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जाके पाकिस्तान में, सारी चीजें हैं, अब ये बैठ के हमसे सवाल ना करें कि हम इसको हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, है ना हो ना, अभी है ना, 5 साल हो गए हैं, तो जब हम आए थे आपने हमसे सवाल किया था, बल्कि हमें प्रेशर डालने की कोशिश, बल्कि मीडिया में भी बातें करनी शुरू कर दी थी आपने कि हम सब मदद नहीं कर रहे, तो अब बराए करम सब
1: चलें,
0: दोस्तों
1: शायद
0: से
1: ये
0: मेरे
1: बातें चलती रहेंगी। आप देखें ना, अब स्वीडन में सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनको कोई मजहबी हलफनामा लिया जाता है कि आप कौन से मजहब से आपका तल्लुक है, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं?
0: नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहली तो बात है कि हमें डेनिश का एक लफज है छक नेमली, यानी कि शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इन ममालक में आके ये आपको बहुत से ऐसे ममालक हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं हम कहते हैं मुसलमान ममालक जो मिडिल ईस्ट में है या उधर थोड़ी बाहर, वो आपको तो वहां पर इंसानी हकूक की पूरी, जो इंसानी हकूक होता है उसकी तो पूरी किसी किस्म की कोई ज्यादा ही कोई चीज नहीं है जो आप वो कर ही नहीं सकते, बल्कि वो सी हर एक बोला था वैसा। लेकिन इन ममालक में आपको वो पूरा पूरा जमहूरियत के अंदर है कि हर चीज करने की आपको इजाजत देते हैं। और ये भी याद रखें कि आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, इन वांता यानी कि जो दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं उसको आप ये समझने वो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ यानी कि मिनोरिटी कह लें, आपको लफ्ज़ आसान में कर लेता हूँ, मिनोरिटी कह लें, मिनोरिटी हैं आप फिर भी, और मिनोरिटी को भी वो अपनी इज्जत की नगाह से अभी भी ये सब देखते हैं। वो लहदा चीज है कि इन ममालिक कुछ लोग हैं जो दीन के खिलाफ बोलते हैं, जो हमारे वो तो बड़ी देर से चल रहा है, वो तो है, लेकिन उसको उसको हमने क्या कहते हैं उसको करना है, उसका उसका उसका जवाब देना है, उसको उसका उसको क्या कहते हैं
1: शायद हम
0: क्रैक
1: जिन
0: डाउन करना है,
1: ममालिक में
0: काउंटर
1: रहते हैं, जो भी मुल्क
0: करना है
1: रहते हैं,
0: हमें।
1: सबको दीन सिखाता है कि जहाँ आप रहते हैं उसके मुल्क के कानून कायदे का एहतराम करें। अक्सर हमारे पास उलमा भी आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप जो है एहतराम करें जहाँ के कानून का।
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे दीन में भी है। जब आप किसी जगह हो गए हैं मुंतकिल, जहाँ पर जो कोई वरियासत है वो क्या कहते हैं मुसलमान नहीं है, लेकिन आप वहां पर मुंतकिल हो गए हैं, जगह चल रहे हैं, फिर आप उनके जो तौर तरीके हैं उसका एहतराम करें। उन्होंने आपको आपके दीन का बिल्कुल, आपको क्या कहते हैं मस्जिदों की इजाजत दी है, इजाजत इबादत की भी इजाजत दी है, आप अपनी इबादत भी करते हैं, हालांकि ये लोग आपसे ज्यादा हैं, आप मिनोरिटी में हैं, लेकिन उन्होंने आपको मुकम्मल इज्जत दे रखी है। लेकिन फिर आपका ये नहीं बनता कि हम उसके ऊपर अपनी चीजें मुसल्लत करें, मसल्लत करना बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, जो जो अगर आप समझते हैं कि ये जो हक है जो इनके आईन में लिखा हुआ है सबके लिए एक जैसा, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत या कोई ज्यादा कोई समझता है कोई हो रही है कुताही, उसको आप उजागर कर सकते हैं और उसमें ये सुनते हैं, उसमें डिबेट होती है, फिर वो आप जब जब आप उसको जाएंगे नहीं होगा तो फिर उसका काम जो है ना आप उस तरह फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं इसको इस तरह
1: शायद
0: लेता हूँ।
1: इंशाल्लाह आपसे बात जारी रहेगी, अभी टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो उसको दूसरे पार्ट में दोबारा आपसे तफसील से बात करेंगे। आप एग्री करते
0: चलें
1: हैं?
0: जी, थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसको ये बस ये बताना चाहता था कि जिस अगर आपके पास 2 मिनट हैं फिर, अगर नहीं है तो मैं
1: जी
0: इसको फिर
1: जी
0: यहाँ ही खत्म
1: कंक्लूड
0: कर
1: कर
0: देता।
1: लें। जी जी
0: अच्छा जी, आप जी, मैं ये कह रहा था कि 2 मिनट लूंगा और ये मेरा था बात के, हाँ वो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हकूक और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है इन इन जमहूरी ममालिक में भी, ये आपकी बात सुनते हैं, लेकिन इसके लिए आपको, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा था, इसके लिए आपको इनके सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। अब आप सिस्टम के अंदर आ ही नहीं, अब आ ही नहीं पाए, यानी कि सिस्टम है ये इनकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है ये इनका मेन है, जो वहां से आपकी आवाज जो वो आपकी आवाज जाती है और सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं उसको। उधर जब आप अपने नुमाइंदे नहीं भेजेंगे तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी भरपूर तरीके से आवाज जा सके, क्योंकि आप काउंसिल में तो आ गए हैं, काउंसिल के इलेक्शन जीत गए हैं, छोटे इतने साल हो गए हैं, 60 साल की जो है हमारी ये नेशन है डेनमार्क की, ऑलमोस्ट 60 के करीब है, 58 हो गए हैं, 68 69 68 में जो है अबाउ इजाज आए थे और जो पहले थे फिर 70s में आए, तो आप इसको खुद ही कर रहे हैं, 60 के करीब जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने कोई इस तरह की कोई तरक्की नहीं की सियासी, यहाँ पर सियासी भी करनी है, हाली डॉक्टर और इंजीनियर जो बनने चाहिए उससे कोई खास वो नहीं होता जब आप तक आप इनके सिस्टम के अंदर ना आए, और वो उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया है मार्च के महीने में इधर इधर पर डेनमार्क।
1: शायद बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा इस पर खुल के बात करेंगे।
0: जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शायद नसीम साहब, उनकी बातें आपने सुनी। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बात करना चाहता है, कोई भी जवाब देना चाहता है, अपनी राय का इजहार करना चाहता है, अदर आपकी आवाज़ का रेडियो, आपकी आवाज़ का टाइम उनके लिए हाजिर है।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये नहीं कह रहे कि 3 लाख क्रिमिनल्स हैं तो वो इसलिए ज्यादा है तो वो नहीं होने चाहिए, या टेररिस्ट है, नहीं कहते हैं कि 3 लाख मुसलमान, तो यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप ये एक जुर्म बना के पेश कर रहे हैं, ये कभी इस तरह सोशल डेमोक्रेट पहले नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ा कि इनमें चेंज आया है, इसके ऊपर एक हमने बहस जो है एनालिसिस लिखे हैं और कॉलम लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ इस पे बहस होगी, सियासी बहस होगी, और आपको पता है कि फिर ये अपने दिफा में बोलेंगे करेंगे। अभी पहली मेरी इनकी जो नया जो ये वो लेंगे ऑफ बना है थॉमस की, वो इसके साथ मेरी एक आप समझ लें एक सियासी क्लैश हुआ है, और हमने मतलब वो लिखा है, उसने लिखा आगे, मैंने उसका जवाब दिया, फिर उसने लिखा, तो अब मैंने ये कॉलम लिखा, अब देखें आप आगे क्या रिएक्शन होता है। तो बहरहाल मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी फर्क आया इनमें, कि कभी ये बने ही इसलिए थे कि किसी का बैकग्राउंड जो है ना वो उसको क्वालिफाई या डिसक्वालिफाई नहीं करता, आपके एक्शंस करते हैं। लेकिन आप मुसलमानों के हवाले से कहते हैं डजंट मैटर अच्छा है बुरा है, बस मुसलमान है, 3 लाख नहीं बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए।
1: चले सिकंदर, हम एक बात है अभी बाहर नहीं करते, एक चूंकि खबर है, जब तक खबर ये आएगी नहीं, जो हमारी मुलाकात होने जा रही है तो मुलाकात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब पहले बात करते थे मुसलमान की बात होती है, फॉरनर की बात होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क रखा जाता था। अब ये जब बात करते हैं, अब स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं सेप्टेम्बर में, तो वो उनकी पार्टी जिस तरह डैनिश पीपल्स पार्टी है, अब उन्होंने गैर मुल्कियों को निकाल दिया, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब डेनमार्क में भी हो रहा है कि गैर मुल्की की बात नहीं की जाती, मुसलमानों की बात की जा रही है, ये दोनों चीज़ें बराबर क्यों नज़र आ रही हैं?
0: ये अनफॉर्चुनेटली यही मैं समझता हूँ जो आपने बात अभी बढ़ाई आगे, ये बेसिकली मेरे एनालिसिस का सेकंड जो स्टेप है वो यही है कि पहले रेसिज्म होती थी कलर पे, पहले रेसिज्म होती थी आपकी क्या कहते हैं जो एक आप जिसे कहते हैं गासे पे, ये अभी भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनको इतना इस्लामोफोबिया हो चुका है इस सिस्टम को, इन लोगों को, इस मतलब लोगों से मराज जो एक पोलिटिकल इलीट है, कि इनको अब मुसलमान और इस्लाम के अलावा कुछ चीज नजर नहीं आती। अब अगर आप जो इस वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट फॉर मेंस की खारिजा जो है उन्होंने एक सर्वे किया, तो उसमें ये डेनमार्क का सबसे बड़ा सर्वे है इस हवाले से, उसमें ये सामने आया कि 8 में से 10 जो मतलब माइनॉरिटीज हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, 8 में से 10, अंदाजा लगाएं, 10 बंदों में से 8 लोगों ने कहा है कि हम ये फील करते हैं, इस सर्वे में बता दिया। उसके बाद आप देखें कि जितनी भी इस वक्त जो कानून साजी होती है वो सब माइनॉरिटीज के लिए नहीं होती, वो स्पेसिफिकली उसमें मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि मुसलमान इशू है। देखे ना अभी मेरे पिछले दिनों भी डिबेट चल रही थी, उसमें इसने मैंने जब यही बात की, मैंने कहा कि आप सोचे जरा कि किसी सियासतदान ने टीवी पे, अब आप सब लोग ना आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि यही सियासतदान जिसने मुसलमानों के बारे में ये कहा है, ये उसी टीवी पे बैठ के कहता कि मैं समझता हूँ यहाँ पे 3 लाख यहूदी है और ये टू मच है, नहीं होने चाहिए। आप जरा सोचे कि क्या हशर मच जाना था, सबने कहना था कितनी तो घटिया बात की है, लेकिन आप ये देख लें कि अब मुसलमानों के हवाले से बात हो रही है तो कोई भी नहीं कह रहा, इसलिए ये अब आप स्वीडन में भी देखें, जर्मनी में भी देखें, फ्रांस में भी देखें, बेलफास्ट में जो हो रहा है आपने देखा पिछले दिनों की, बाहर लोगों को घरों को आग लगा के लोगों को भागना पड़ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ये हालात ऐसे हैं। और मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें भी जितने भी हम माइनॉरिटीज हैं, हम इस मुल्क के का हिस्सा है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, प्यार है, हम इधर ही रहते हैं, हमारे बच्चे भी इधर रहते हैं, हमें भी अपनी पॉलिटिकल आवाज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और ये मस्कीनों वाली सियासत जो है इसको अब छोड़ देना चाहिए।
1: सिकंदर, आप हमेशा बात करते हैं मस्कीनों वाली सियासत छोड़ देनी चाहिए, चलिए इस पर लंबा प्रोग्राम करेंगे। तो आज जिस सिलसिला में आप गए हुए थे बानाल, तो सियासी पार्टियों के डेफिनेट लीडरान से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, रश भी होगा, तो इसमें से आपने क्या हासिल किया?
0: देखें सबसे पहले तो बात ये है कि मैं इसका नाम तो है फॉल्कमल, लेकिन मैंने भी इसके ऊपर एक पोस्ट भी बनाई है पिछले दिनों, ये फॉल्कमल नाम गलत है, फॉल्कमल का मतलब होता है पीपल की मीटिंग, लोगों की मीटिंग, इसका नाम रखना चाहिए इलीट टू इलीट की मीटिंग, क्योंकि ये ऐसा ऐसी जगह है, ऐसी मीटिंग है जिसमें सारे सियासतदान, सारे लॉबी करने वाले लोग,

0: सारी एस्टेब्लिशमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे जो है इन्होंने अपने एक आइलैंड पे, ये होता है ना कि आपने की कोपेनहेगन में रखा है कि हर बंदा पहुंच भी सके, ये इन्होंने जापान हॉल में एक आइलैंड पे रखा हुआ है। इधर ये सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, और ये मैं समझता हूँ एक इलीट क्लब है। तो इसमें यही है कि हम जब जाते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर लोग होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन लोग नहीं होते, मतलब यही जो सियासतदान और
1: सियासी गुरु कह सकते हैं।
0: तो बात बहरहाल यही है कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एज अ सियासतदान इसलिए होना जरूरी है कि जाहिर बात है यहाँ पे सारे आए होते हैं, यहाँ पे बड़ी बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, ऐसे सियासतदान दूसरे मुल्क के, दूसरे जो जो मुल्क के हिस्से हैं उनके सियासतदान, सबसे बातचीत होती है, डिबेट होती है। लेकिन वैसे मैं ये जरूर कहूंगा, ये मैंने भी इसमें कहता है लिखा भी है कि ये है लोगों के लिए नहीं, ये नाम गलत है, ये इलीट क्लास के लिए ये जो है मेला सजाया जाता है।
1: सिकंदर, आप कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आखिर में अपने लोगों को आप क्या पैगाम देंगे?
0: मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेलफास्ट में देखा क्या हुआ है, अब वहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और वहां पे भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा जब हर लोग बंदा कहता है कि वो यार वो तो बेलफास्ट है, यहाँ डेनमार्क में तो नहीं हो सकता, तो बेलफास्ट के शहरी हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि लोग जो है वो आपको घरों से निकालेंगे और आपके घरों को आग लगाएंगे, आपकी गाड़ियों को आग लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज एक, मैंने सोचा कि ये गरीब तबका, वर्किंग क्लास तबका, लो मिडिल क्लास तबका, जो गोरे हैं उनको इन्होंने उकताया हुआ है, उन्होंने उनको इन्होंने वो बहकाया हुआ है, और वो अब उन मुसलमानों के माइनॉरिटीज के खिलाफ है। जबकि कोई इन बदबख्तों को कहे कि आपके दुश्मन आपका नेबर नहीं है, गरीब आदमी या वर्किंग क्लास आदमी, वर्किंग क्लास आदमी का घर जला रहा है और जो ऊपर इलीट बैठी है वो देख रही है तमाशा, एक काश इनको ये कोई बताता कि आप वर्किंग क्लास से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, चाहे आप गोरे हैं या काले हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आप लोग इत्तेहादी हो, आप लोगों के घर में अगर आपका चूल्हा भी नहीं चल रहा मुश्किल से, इधर भी वही हाल है, ये आपके नेबर की गलती नहीं है, ये जिसका नाम मोहम्मद है ये उसकी गलती नहीं है, ऊपर देखो, ऊपर जो एलीट बैठी है, जो सियासी फैसले कर रहे हैं, ये उन लोगों की गलती है। एक दूसरे से लड़ना आप छोड़ो, एक दूसरे के आप हो, एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे के साथी हो, काश इन चीजों को समझ आता थी, क्योंकि ये इलीट हमेशा ये करती आई है डिवाइड एंड रूल। तो ये बताती है, ये एक गरीब को या एक मस्कीन को या एक मिडिल क्लास बंदे को कहती है कि देखो उसकी वजह से ये हो रहा है, जबकि उसका भी यही मसला है। आप लोग एक अलायंस बनाओ और इलीट से अपना हक मांगो, मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलते चलते एक बात आपसे पूछ लूँ, जो आप पार्लियामेंट के जो है नेशनल पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं, तो सिकंदर आप बताएं कि जिन ममालिक में लोग रहते सियासी पनाह ली हो तो उनकी तो डेमोंस्ट्रेशन करना कोई बंदे को बात नजर आती है सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे, जिन लोगों के पास परमानेंट रिहाइश होती है, डैनिश पासपोर्ट होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, ब्रिटिश पासपोर्ट या दुनिया में किसी का भी मुल्क का पासपोर्ट होता है, उन मुल्कों में रह कर जो है वो सियासी पार्टियों को गालियाँ देना, जो पासपोर्ट लिया हुआ है उस पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे सख्त लफाज इस्तेमाल करना, तो क्या ये कानून इजाजत देता है अगर यहाँ डेनमार्क में कोई डैनिश पासपोर्ट के बारे में बात करना शुरू कर दे और रहता यहाँ हो?
0: देखिए मैं समझता हूँ ये भी एक मुनाफ़कत ही है, फिर आप अगर आपको देखिए सियासी क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, उसमें कोई मुझे इशू नहीं लगता, मैं खुद यहाँ पे एक सियासत को और जो उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एक पासपोर्ट को, एक मुल्क को, एक झंडे को जिसमें आप रह रहे हैं, जिसके आप शहरी हैं, उस क्या कहते हैं जमीन को, मिट्टी को, और नुकसान पहुंचाना या क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ मुनाफ़कत है और गलत बात है। जिस तरह की हम पाकिस्तानी रूट से हमारे हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसी तरह डेनमार्क हमारा मुल्क है, हम इससे भी मोहब्बत करते हैं। तो ये है कि आप क्रिटिसाइज करें, आप सियासत को क्रिटिसाइज करें, सियासतदानों को क्रिटिसाइज करें, आप एक मुल्क को, पासपोर्ट को, एक जमीन को ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि बहनाल में गए हुए थे फलके म्यूज में, तो उनसे हमने बराह रास्त बातें की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور اپنی رائے دینا چاہتا ہے اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामान्य नाज़रीन, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम आज बहुत अच्छा है। बादल भी हैं, धूप भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। सियासी मौसम भी अच्छा भी है और मिला जुला भी है। गैर मुल्कियों के बारे में या हुकूमत के बारे में, डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क के शहरियों के बारे में, तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं तजिया निगार अदनान अली अमीन, हमारे साथ मौजूद है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, साहब कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, आप सुनाएं। ठीक है अदनान, आज मौसम के लिहाज से जो सियासी खबरें हैं, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज ला रहे हैं, क्या कमेटियों में लोगों को जगह मिल रही है, बहुत सारे धमाके हो रहे हैं सियासी?
2: हाँ राजा साहब, धमाके तो काफी हो रहे हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो टेक्निकली जो बन गई है और आस्ता आस्ता अपना क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, ये उल्वेल होती है जिसे कहते हैं फैंस उल्वेल, जिसमें ये सारा बजट वगैरह और वो आता है। और उसमें बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि उसकी जो चेयरमैन है वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंग्लिश लिस्टिंग की लड़की है, जिसका नाम विक्टोरिया विल्सकूसिस है, क्योंकि वो उसकी माँ जो है वो है मेल में अमेरिका से, मतलब कि वो भी आधा। तो टेक्निकली देखा जाए एक बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं एक बैकग्राउंड उसका

0: उधर से भी उसकी माँ है और उसका एक हिस्ट्री भी है उसके अंदर, और वो उस पर क्या कहते हैं उस उधर में बैठ गई है। और उसमें सरप्राइजिंग ये है कि जो वाइस चेयरमैन है वो डेथ हो चुका, ठीक है। तो मतलब कह लें कि ये ऐसी उजवेल होगी जिसके अंदर दोनों का क्या कहते हैं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लिश लिस्ट ने एक तरफ जाने लगेंगे और वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाने लगेंगे। वो टेक्निकली देखा जाए तो उलेनिंग के पुलसीत के अलावा वैसे तो उनकी काफी चीजें आपस में मिलती भी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन के बोल पे बोलते हैं और इन चीजों पे बोलते हैं, तो बंदा कह सकता है वो एक किस्म का उनका होपफुली अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा ये है कि टेंथ फॉल के ऊपर चीज जो है वो इन पे असर वेल के परफॉर्मेंस पॉज पे भी बैठ गए हैं, वो 2024 से बैठे हुए थे और वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से क्या कहते हैं काफी तब्दीली आई है, काफी बॉल क्या कहते हैं चेंज किया गया और काफी क्या कहते हैं बॉल वगैरह फेंके गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अब अपना काम शुरू कर देंगे और अपनी चीजें क्या कहते हैं आस्ता आस्ता डेवलप ऑफ रहे हैं और उन पे अब क्या कहते हैं किस्म का काम शुरू हो जाएगा। सियासी ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी है ना कि 11, 12, 13 तारीख को फॉल के मौजूद होती है पॉल के अंदर जहाँ पे ये सारे खड़े हो जाते हैं, तो ये तो वहां रवाना हो गए हैं और डेफिनेटली वहां पे क्या कहते हैं सख्त मुकाबला आएगा, क्योंकि दो पुराने जमाने में जिस तरह होते थे ब्लॉक उस किस्म के ब्लॉक आ गए हैं ना, कह रहे हैं कोल ब्लॉक और एक फ्लो ब्लॉक है, और देखते हैं कि इस बार कितने हैवी अटैक्स एक दूसरे पे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीक पे तो हो रहे हैं कि वो उसने पिथावरी की है फ्लो ब्लॉक के साथ, तो ये तो एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया है। उसके अंदर ये भी है कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों में उलेनी के तो पैर भी बड़ा हार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मोटरस्पोर्ट के भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, टेंस पॉल के बच्ची पे के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो वही बात है कि अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या बनती है, कि वो खड़े होते हैं कि इससे और स्ट्रॉन्ग कितना ना हो जाए, क्योंकि ये काफी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वजह क्या है। तो वजह वो यही है कि जो टेंस पॉल के बच्ची और मुखाड़ है उन्होंने पुलसी को बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। एक और मैं चीज लोगों को बता दूं कि जिनके पास तो पासपोर्ट होल्ड हुए थे इलेक्शन की वजह से, वो 3-4 मंथ और न एक्सपेक्ट करें कि वो पासपोर्ट की तरफ आएंगे। जो मैंने उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सुनी थी वो यही था कि हम शायद इफ्ताह तक पहुंच जाए, तो अब देखते हैं कि जब बैठते हैं तो क्या क्या क्या स्टेटमेंट इस पे आती है।
1: अदनान, ये जो फिल्मी
0: हाँ
1: डायलॉग्स की तरह बातें की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब अगर इनिशिएशन की बात करें तो वो उनकी जो है उस वेल की जो है वो चेयरमैन बन गई हैं इनिशिएशन वाले, तो वो ज़रा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
0: सर मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला ना ना रहना हुआ, तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मिलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है,
1: तो
0: और
1: दांतों के
0: मुझे
1: इलाज
0: नहीं
1: के लिए
0: लगता।
1: उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज जितना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
0: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा कैपेसिटी का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1,000 कमी है डेंटिस्ट की, टेन प्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टनर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा, और जो ईराओं का ना जो नई सोना समिस्ता बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का कोई पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तब्दील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी। सबसे
1: अदनान,
0: पहले
1: जिस
0: तो
1: तरह बच्चे घरों में
0: इनका
1: बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ।
0: नहीं, राजा साहब अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना। इस वक्त मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूं कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है। मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन लोग थे लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैन फिनिश्ता स्टार्ट उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे ओवर्स मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस के नए आ गए हैं, पुराने हट गए हैं, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बेजता वाले ने तो यही किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोनॉमी की पॉलिसी सारी वो चलाएगी। और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से जाने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये पूरे
1: अदनान, कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
0: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास जो उसके पास है।
1: तो आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं। तो आप देखना है कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
0: सर आप एक चीज में से याद रखना कि उलनी कुलतीन का जो नेगोशिएशन इस वर्किंग स्कूल के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस पर बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लोगेगा और मेरे ख्याल उनके मंत्रिता डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52। और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि साहब मिलने की चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल लें, नेपाल भी डाल लें, पैसवाल के पक्ष भी डाल लें, टेमस के मुखाड़ा भी डाल लें, तो उलनी की पुलसी जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी। और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए मगर वो देखा जाएगा, क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं जो हम लोग हैं हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डैंस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से जिस मर्जी से वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना। तो ये
0: और
1: तो
0: इसको
1: गैर
0: बड़ा
1: मुल्कियों को
0: डैमेज कर
1: पूछना
0: दिया।
1: चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए हैं वो बोलते क्यों नहीं है।
0: अरे सब ये तो वो उनको ही पता है ना। ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था, इलेक्शन के दिनों में जो बैठ हो रही थी वहां पे ना, एक छोटी सारी बात शुरू हो गई, क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए, तो मुझे पता था, मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, ये मेरी बीवी का राज था वो, ये कहते आ तेरी कहते आ तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख, मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी तुम्हारी भी शादी हुई। कहता हूँ, कहते तुम अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करते। कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीजन सपोर्ट करनी है? तो तू, मैंने को से कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए, वो सारा एक बार में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करूँ। मैंने कहा बात होती है कि आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे मौत उसको, मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं, मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको पोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या कुछ करें, तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी की ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे, मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बाहर आए, एक अंदर आए एक बाहर आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ रहा है, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे के कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ जाए इस बात को सुन सुन के, और आखिर में ये हो कि हम के चलो बाहर पे असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान जी, आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे। आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
0: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है, मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे, कर सके या नहीं? देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे, क्योंकि वो क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए हैं। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो इधर अब कह लें तकरीबन 56-60 सालों से, 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की है, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो के तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.